सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 मई सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 10 सेकंड होने को है। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम चिंतन, विषय है ईमानदारी।

एक प्रतिष्ठित कार्यालय की प्रोन्नति समिति के सदस्य अपनी कई बैठकों के बाद भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। विषय उसी कार्यालय के चार योग्य कर्मठ कुशल प्रशासकों में से किसी एक को ही प्रोन्नति देने का था। अंत में उस समिति के सदस्यों ने इस विषय को कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के पास इस निर्णय के साथ भेज दिया। हम लोगों के विचार से किसी एक को ही प्रोन्नत करना शेष तीनों के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से ये निर्णय करते हैं कि इनमें से किसी एक व्यक्ति की प्रोन्नति का फैसला आप ही करें। इसके बाद उन अधिकारियों के मासिक वेतन के भुगतान के पूर्व सर्वोच्च अधिकारी ने वेतन भुगतान कर्मचारी को बुलाकर कुछ अत्यंत गोपनीय आदेश दिए। यथासमय चारों अधिकारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया। वेतन भुगतान के बाद ठीक दूसरे दिन उन चारों में से एक अधिकारी आकर वेतन भुगतान करने वाले कर्मचारी को ये कहकर कुछ रुपये लौटा गया कि मेरे वेतन लिफाफे में गलती से ये रुपये वेतन के रूप में अधिक थे, कृपया इसे वापस ले लें। इसके कुछ दिनों के बाद इन चारों में से एक व्यक्ति की प्रोन्नति की सूचना कार्यालय में प्रचारित कर दी गई। शेष तीनों सर्वोच्च अधिकारी के पास पहुंच गए कि उनकी प्रोन्नति क्यों नहीं की गई। प्रोन्नति देने का कारण स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च अधिकारी ने कहा, आप तीनों भी योग्य हैं किंतु ईमानदार नहीं है। ईमानदारी के अभाव में आपके सारे गुण अधूरे हैं। आपके वेतन के लिफाफे में वेतन के रुपये से अधिक रुपये थे किंतु आपने इसकी चर्चा तक नहीं की। आप में से जो ईमानदार है उसी की प्रोन्नति हुई है। तीनों लज्जित होकर लौट आए। ये घटना कहने सुनने में छोटी लग सकती है किंतु इसमें ईमानदारी का सामर्थ्य स्पष्ट हो जाता है। हम में अनेक कमजोरियां हैं किंतु यदि हम में ईमानदारी है तो उसकी चमक में ये सारी कमजोरियां और त्रुटियां छिप जाती हैं। लोग प्रायः कह देते हैं कि दुनिया का व्यवहार ईमानदार बने रहने से नहीं चल सकता। व्यवहार में तो ईमानदारी घाटे का सौदा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि व्यापार में साख उसी व्यापारी की बनी रहती है जो ईमानदार होता है। ऐसा व्यापारी अपनी चीजों के क्रय मूल्य का चिट्ठा अपने उपभोक्ताओं को निसंकोच दिखाकर उसमें ईमानदारी से अपना उचित मुनाफा जोड़कर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है और तब उसकी दुकान से वस्तु को खरीदने में किसी उपभोक्ता को कोई आपत्ति नहीं होती। बेईमान व्यापारी कुछ दिनों तक ही अपने खरीदारों को ठग सकता है, पर उसकी पोल खुलती ही है और तब चार दिनों की चांदनी अंतहीन अंधेरी रात बनकर सामने आती है। अपने अपने पेशों के प्रति ईमानदारी बनी रहे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्या वो डॉक्टर ईमानदार है जो अपने रोगी को उसके रोग की सही जानकारी नहीं देकर केवल उसे अपनी आमदनी का अच्छा जरिया समझता है? क्या आप उस योग्य शिक्षक को ईमानदार मानेंगे जो कक्षा में अपना विषय केवल इसलिए अच्छी तरह नहीं समझाता कि इसके कारण विद्यार्थी अलग से उससे ट्यूशन नहीं पढ़ सकेंगे? उस कुशल प्रशासक में भी ईमानदारी का अभाव है जो बड़ी चालाकी से जांच के फंदे से अपने को बचाते हुए काम उन्हीं का मुश्तैदी से पूरा करता है जिनसे उसे बड़ी रकम हाथ लगती है। कार्यालय में काम करने वाले वे सभी व्यक्ति ईमानदारी से हट जाते हैं जो झूठे बहाने बनाकर अपने नियत स्थान से हट हट कर इधर उधर घूमने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं, और उस नेता में भी ईमानदारी के दर्शन नहीं होते जो लोक लुभावने वायदे तो करता है पर उसे पूरा करने की सोचता तक नहीं। यदि कोई हमें बेईमान कह देता है तो इसे हम सहज ही नहीं झेल पाते, सुनकर तिलमिला जाते हैं, इसे सबसे बड़ी गाली मानते हैं, और है भी ये सबसे बड़ी गाली। पर ये गाली नहीं सुननी पड़े या ये गाली किसी प्रकार हम पर सही ना उतरे, इसके लिए हमें ईमानदारी को अपने चरित्र का

0: स्वाभाविक गुण बनाना ही होगा। ईमानदार व्यक्ति का लोहा उसके दुश्मन भी मानने को बाध्य हो जाया करते हैं। अंग्रेजों की अनेक कूटनीतिक चालें राष्ट्रपिता गांधी की ईमानदारी का सामना करते ही प्रभावहीन हो जाया करती थी। गांधी जी के सत्य अहिंसा को उनकी ईमानदारी ही अमोघ अस्त्र बना देती थी। अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए हमें अपने क्षुद्र स्वार्थों, तात्कालिक लाभों और बड़े से बड़े प्रलोभनों को सहर्ष छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी नष्ट हो जाने पर सभी प्रकार के लाभ कौड़ी के तीन हो जाते हैं। ईमानदारी वो जल भरी नदी है जिसमें हमारे गुणों की नाव सहज भाव से चल सकती है। ये ना रहे तो हमारे गुणों का जीवन में अग्रसर होना कठिन हो जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्री राम चरित्र मानस गान एपिसोड 393।

शूद्र वंश में जन्मे काक भुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आबसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं। उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्रवंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री राम चरित्र मानस गान भाग 393 आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए अब आपको जानकारी दे दे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

किसान वाणी का और 5:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेहनत का।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

शब्द है प्रधान जगत में, लाल बिहारी सत सुना दिल का। हो गया उदंड का है, हो गया उदंड।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रसंग के अंतर्गत सामाजिक वार्ता, घर में पहचाने अपने भगवान को।

माँ बाप एक ऐसा बल है जिनकी छत्रछाया में रहते हुए एक बालक अपने को सदैव सुरक्षित एवं गौरवान्वित महसूस करता है। एक बच्चे के गर्भ में आते ही हर माँ बाप की खुली आँखों में एक सपना पलने लगता है, बच्चे की किलकारी और सुंदर भविष्य के लिए। माँ बाप जीवन की वह अमूल्य पूंजी है जिनके समक्ष जीवन के सारे सुख सारी दौलत छोटी लगती है। माँ बाप ही हमें इस सुंदर सृष्टि को देखने के लिए संसार में लाते हैं। बहुत खुश नसीब है वे बच्चे जिनके बचपन माँ बाप के आंचल तथा पिता के साये में बीतता है। माँ बाप आजीवन बच्चे को कवच स्वरूप हर आपदा हर संकट से बचाकर रखते हैं। माँ रात भर अपने बच्चों को जाग जाग कर पालती हैं, पिता दिन भर मेहनत कर पसीना बहाकर उनके हर शौक को पूरा करते हैं। इससे पिता को बहुत खुशी मिलती है। बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश। लेकिन एक पुरानी कहावत है, जिसके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। जो बच्चे बचपन से लेकर अधेड़ उम्र तक माँ बाप के साये में पले बड़े हो, वे माता पिता के महत्व को समझ नहीं पाते और लगभग लोग अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में उन्हें या तो अकेला छोड़ देते हैं या फिर वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। यदि साथ रहते भी हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। सभी माँ बाप को जो उम्मीद होती है कि बच्चे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, वही बच्चे अभी के समय में उनके उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते। आज के बच्चे युवा होने पर अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन माँ बाप को भूल जाते हैं। माता पिता का महत्व वो बच्चे ही समझते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। आज के युवा पीढ़ी धर्म के प्रति श्रद्धा कहे या दिखावे की प्रवृत्ति पूरी नजर आती है। यहाँ मंदिरों के लिए भगवान के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका दिखावा करते हैं, वहीं घर में यह सब करते हैं। एक कहावत है कि घर की माँ को खुश करो, मंदिर की माँ खुद खुश हो जाएंगी। बहुत से बच्चे माँ बाप का बंटवारा भी कर देते हैं, जैसे कि वह कोई वस्तु हो। कहा जाता है कि माँ बाप 10 बच्चे को अकेले पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज माता पिता के प्रति सेवा का भाव बहुत कम देखने को मिलता है। हमें यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम जहाँ हैं, कल उस जगह हमारे माता पिता थे। आज हम उनके साथ जो भी करेंगे, कल वैसा ही हमारे साथ हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए हमें बाल्यकाल से ही बच्चों के मन में घर के बुजुर्गों के प्रति आदर सत्कार की भावना डालनी चाहिए। उनमें बड़ों के चरण स्पर्श, नमस्कार तथा सेवा करने की भावना जागृत करना चाहिए। उन्हें बताएं कुछ पाने के लिए झुकना जरूरी है। जब हम बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, तो अनायास ही उनका हाथ हमारे सिर पर आ जाता है तथा मुख से आशीर्वाद की झड़ी सी लग जाती है। ऐसे अमूल्य निधि हमें बिना किसी खर्च के थोड़े से प्रयास से ही प्राप्त हो जाती है, मगर हम अपनी नासमझी अज्ञानता के कारण उसे खो रहे हैं। इस पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जिनके आंचल में रहकर पलना था सीखा, जिनकी उंगली पकड़कर चलना था सीखा, आज वही बच्चे माँ के दूध का ऐसा कर चुकाते हैं, माँ अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, जिनके कंधे

पर बैठकर देखा था मेला। ऐसे माँ बाप को वे खुशियाँ नहीं दे पाते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, जिनसे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जिसने हर सुख दुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, आज अपने माँ बाप को वे हाथ ऐसे ही छोड़ जाते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। युगों से चला आ रहा है कि माता पिता के आशीर्वाद जीवन के कष्टों से हमारी रक्षा करता है। माता पिता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। एक पूर्ण जीवन वही जीता है जो माता पिता की सेवा करते हैं। जीवन की संध्या बेला में हर माता पिता की इच्छा होती है कि वे उनके मन आंगन में घर के चिराग की रोशनी सदा रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, चाहे बच्चे कुछ भी करें। कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें कोरोना के लॉकडाउन में देखने को मिला। कोरोना के कारण ही अपने परायों का फर्क दिखा है। इस कोरोना काल में कई बच्चे ने अपने माँ को लाचार बनाकर घर से बाहर निकाल दिया, कई तो रास्ते में छोड़ गए, कई ने यह बोलकर भाग गए कि दवा लेकर आता हूँ, उसके बाद तो ना दवा आई और ना बेटा। इन सबों को कम किया जा सकता है, स्थिति सुधर सकती है, बस थोड़े से ध्यान और गंभीरता से इस पर चर्चा करने की जरूरत है। बच्चों के मन में यह बात डालने की जरूरत है जैसा कक्षा में कई विषयों पर पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसे भी एक महत्वपूर्ण विषय की तरह ही कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। माता पिता घर की छत है, उन्हें बोझ मत समझो, बल्कि अपना सौभाग्य समझो, क्योंकि जब तक हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं, तब तक जिंदगी एक गीत की तरह गुनगुनाती है। इसलिए जब तक माता पिता की शीतल छांव में बैठने का मौका मिले, तब तक अपना बचपन महसूस करो, समेट लो, सुखद क्षणों की मीठी यादों के रूप में माता पिता की इतनी सेवा करो कि उनकी दुआओं से इस लोक तथा परलोक दोनों सुधार लो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रसंग के अंतर्गत वार्ता घर में पहचाने अपने भगवान को। वार्ताकार थी भवानी कुमारी। हमारा अगला कार्यक्रम होगा प्रांतीय संगीत, बस कुछ ही देर में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders.
4: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे. इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें

0: दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
2: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट

0: से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश माघो। द हेडलाइंस, सेंटर आस्क्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू बिल्ड 30 डेज LPG रिजर्व्स एज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज मेजर गेन्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated

0: meters. India's other three gold medals came from Nitin Gupta, who won the men's 5,000-meter race walk, while Amanat Kamboj topped the women's discus throw and Rahul Jakhar bagged the yellow medal in the men's decathlon. In cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in qualifier 2 at New Chandigarh last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash against defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. Chasing a formidable target of 215 runs, the 2022 champions produced a batting masterclass, reaching 219 for 3 in just 18.4 overs. Skipper Shubman Gill led from the front with a scintillating 104 of 53 balls, while Sai Sudarshan scored 58 runs. Gill was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Naresh. Ministry of Home Affairs clears record CAPF deployment for 57-day Amarnath pilgrimage, says the Pioneer. IMD lowers monsoon outlook and puts off date of onset to June, is a top headline in the Hindu. Decades driest monsoon looms. Met cuts estimate to 90% of 50-year average, notes the Indian Express. Under the headline, next energy challenge, cheap power, costly transition. Financial Express writes that though consumers understand the long-term savings for a push to green energy, the challenge is affordability at the point of purchase. In the Sun Times carries a picture of Blue Origin's New Glenn rocket exploding in a massive fireball during a test on a Florida launch pad as the firm was preparing the vehicle for its fourth launch, slated to deploy a batch of satellites for Amazon's Leo. In its editorial, Breather for Now, For How Long? The Times of India writes that as a tentative US-Iran deal awaits Trump's signature, the global economy is hoping for a break. But geopolitics as well as politics in Trump camp and among Iran hardliners means conflict can restart after a few months. And finally, demand for gold turning cold on steep duty hike. Under that headline, the Economic Times says that gold sales have fallen 70% on muted consumer sentiment, already hurt by surge in fuel and food prices. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center asked oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ अभियान के तहत राज्यों को दिया स्पष्ट रोड मैप। 1 जून से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान होगा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल स्रोतों से अवैध कब्जा हटाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। स्मार्ट सिटी, पेयजल आपूर्ति और सिवरेज ट्रीटमेंट योजनाओं को समय पर पूरा करने के आदेश। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रांची में 5 शातिर साइबर ठग और लातेहार में 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। राज्य के कई जिलों में गरज के साथ झमाझम बारिश। राजधानी रांची में दिन में ही छाया अंधेरा। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 4 लोगों की मौत। और रांची जिला शतरंज चैंपियनशिप का हुआ भव्य उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने युवाओं से खेल से जुड़ने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ खरीफ अभियान 2026 की बैठक में एक स्पष्ट कृषि रोडमैप जारी किया है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अब किसान हित में तेज फैसलों का समय है। खेती में लापरवाही, नकली बीज और घटिया कीटनाशकों की बिक्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने टीम इंडिया की भावना से बीज से बाजार तक की व्यवस्था दुरुस्त करने और 1 जून से शुरू होने वाले खेत बचाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
3: खेत बचाओ अभियान ये आपके बिना नहीं चल सकता। 1 जून से 30 जून तक आप सबको भी निकलना पड़ेगा, मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलें, बाकी मंत्रियों से भी कहें, केंद्रीय मंत्रियों से कहें, विधायकों से कहें, सांसदों से कहें, जनप्रतिनिधि लीड करें, कितना खाद, कौन सा पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जो आवश्यकता उसको कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। खेत बचाओ अभियान में आप सब चीजें जोड़ सकते हैं। बीजों के मिनी किट देना अभी तो ना, जनता के सामने तो बड़े कार्यक्रम नहीं करना, गांव के कार्यक्रम करना है। योजनाओं का लाभ बांट दें, केसीसी बन रहे केसीसी बांट दें, किसान सम्मान निधि में कोई रह गया है औपचारिकता पूरी करके उसका लाभ हम दे दें।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए जल स्रोतों पर हुए अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी, पेयजल आपूर्ति और ट्रैफिक प्रबंधन जैसी जनहित की योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया। कोडरमा जिले के अंगीभूत कॉलेजों का गिरिडीह के सर जेसी बोस विश्वविद्यालय में स्थानांतरण का मामला गर्मा गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले को छात्र विरोधी और अव्यवहारिक बताते हुए राज्य सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।
4: विरोध इस बात का है कि कोडरमा जब हजारीबाग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, फिर इसे गिरिडीह में जेसी बोस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेने का औचित्य क्या है। हम सभी का ये कहना है कि राज्य सरकार को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को वापस करे और पूर्ववत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रखे।
2: जामताड़ा में उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी आलोक कुमार ने जनगणना के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जामताड़ा जिले के निवासियों से इस राष्ट्रीय कार्य में आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि सटीक जनगणना ही देश के विकास की असली आधारशिला है।
5: कि जनगणना 2027 का कार्य चल रहा है, इसमें हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं वो घर घर जाके सेल्फ इन्यूमरेशन जिसने किया है उसके क्वेश्चंस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और जिन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं किया है उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस सब पे डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जनगणना 2027 बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और देश के विकास में भागीदार बने।
2: राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड से एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। तिनगिना पंचायत के रहने वाले पंकज नाग नामक व्यक्ति पर महिला बनकर फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने का आरोप लगा है। जलडेगा बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पंकज नाग और ऑनलाइन आवेदन भरने वाले प्रज्ञा केंद्र संचालक कुमार चाणक्य के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक सैंडल, ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल ATIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में रांची में PNG पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया। गेल इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन रोड, बरियातू रोड, पीपी कंपाउंड और सीरमटोली चौक में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। अगले 5-6 महीनों में रांची के लगभग 1,00,000 घरों तक PNG गैस पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रांची पुलिस ने एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जहां यह गिरोह डिजिटल धोखाधड़ी का नेटवर्क चला रहा था। SSP राकेश रंजन ने बताया कि किन पुलिस इन अधिकारियों अपराधियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इनके बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और राज्यव्यापी नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों का पता लगाया जा सके।
6: छापामारी में हम लोगों ने कुल 5 लोगों

0: को अरेस्ट किया। ये पांच लोग बेसिकली एक तरीके के साइबर क्रिमिनल्स थे जो कि विभिन्न प्रकार के वर्चुअल नंबर्स जनरेट करके क्रिमिनल्स के नाम पे यानी गैंग्स के नाम पे के विभिन्न व्यापारियों को धमकी दे रहे थे और धमकी देकर वहां से एक्सट्रॉशन मनी कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। और इनके पास से अलग अलग 50 से अधिक पासबुक, 25 से अधिक डेबिट कार्ड और 13 के आसपास मोबाइल फोन जो हमने बरामद किए हैं।
1: लातेहार में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से अधिक की अवैध शराब जब्त की है। डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर चंदवा के ससंग मोड़ के पास नाकेबंदी की गई। तस्करों ने ट्रक में भूसे की आड़ में शराब छिपाई थी, जहां से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
2: चेकिंग के दौरान तीन लोग जिसको पकड़े, एक बुलेटो गाड़ी, एक क्रेटा गाड़ी और साथ में एक स्कॉर्पियो क्रेटा, 5-6 ट्रक है। करीब 1100 पेटी विभिन्न प्रकार का अवैध नहीं शराब बरामद हुआ है। इसके साथ में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।
1: राज्य में अचानक आए मौसमी बदलाव के कारण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह राजधानी में घने बादलों के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया और तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और बोकारो समेत कई जिलों में अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, उपमहापौर नीरज कुमार और एफजेसीसीआई अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने संयुक्त रूप से रांची जिला शतरंज चैंपियनशिप 2026 का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महुआ मांझी ने शतरंज की बिसात पर पहली चाल चलकर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि मानसिक विकास, धैर्य और रणनीतिक सोच को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू की मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रास चुनाव, इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर उतारेगा प्रत्याशी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची में 233 हेडमास्टर का वेतन स्थगित। प्रभात खबर लिखता है, कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 1 साल का समय मिला। दैनिक जागरण की सुर्खी है, देश में जल्द दिख सकते हैं प्लास्टिक के नोट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ अभियान के तहत राज्यों को दिया स्पष्ट रोडमैप, 1 जून से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान होगा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल स्रोतों से अवैध कब्जा हटाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। स्मार्ट सिटी, पेयजल आपूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट योजनाओं को समय पर पूरा करने के आदेश। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रांची में 5 शातिर साइबर ठग और लातेहार में 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। राज्य के कई जिलों में गरज के साथ झमाझम बारिश, राजधानी रांची में दिन में छाया अंधेरा, पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 4 लोगों की मौत। और रांची जिला शतरंज चैंपियनशिप का हुआ भव्य उद्घाटन, सांसद महुआ मांझी ने युवाओं से खेल से जुड़ने का किया आह्वान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में आपने सुना चाहत फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कदर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

इस गाने के साथ ही आज का चित्तलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या हाहाकार? तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात करे सर,
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
5: अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की
4: ना,
5: बात है।
4: ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
2: क्या बात सु?
5: खालिद भाई मेरी बीवी क्या? अरे सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
6: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम नहीं बना।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मुरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में

परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रावल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए।

धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए,

0: कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत हाँ बोल, ए इसमें कौन सी साड़ी पहन रही विश्वजीत?
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सोना बेटा तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है?
2: ओहो डैडी मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
3: डैडी जी मेरा नाम परिमल।

0: हेलो
1: हेलो देवी प्रसाद
2: चम्मा
1: नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
0: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
1: वो तो मैं खा गया।
3: खा गए?
1: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
4: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
5: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
4: पूजा भट्टी की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डाके?
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमड़ जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी, हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है, घर एकदम शमशान हो गया था। और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
4: ये मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। हाँ, ये गुलाब वाले तेरा नाम क्या है?

0: जेंटलमैन,
1: लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता इधर कचरा नहीं डालने का।
0: आई एम सॉरी।
1: अबे सॉरी क्या, इंडिया समझा है? गुनाह करो सॉरी बोलो।
2: क्या हुआ दादी जी?
1: अबे ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
3: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं। उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माय गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
4: किसे भेजनी है नोटिस?
5: भगवान को।
4: मिस्टर भगवान? सरनेम?
5: पता नहीं क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
4: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
5: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
4: अच्छा।

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर

इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए आपके इंतजार को देते हैं पूर्ण विराम और शुरू करते हैं गीतों संगीत और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम हेलो हजारीबाग का इस गीत के साथ।

इस प्यारे से गीत के बाद चलिए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। श्रोताओं, गोवा अपना राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाता है। यह दिवस 1987 में इसी दिन गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने और भारतीय संघ का राज्य बनने की याद में मनाया जाता है। गोवा से जुड़े अन्य प्रमुख ऐतिहासिक दिवस इस प्रकार हैं: गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के 450 वर्षों के शासन से मुक्त हुआ था। गोवा क्रांति दिवस 18 जून 1946 में इसी दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका था।

दोस्तों, हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा

वैश्विक खाद्य सुरक्षा में इस फसल के अत्यधिक महत्व और अरबों लोगों के भोजन के रूप में इसके योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। आइए जानते हैं आलू के मुख्य बिंदुओं और इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, इस दिन को मनाने का मुख्य लक्ष्य आलू की खेती के महत्व, इसके पोषण संबंधी लाभों और कृषि खाद्य प्रणालियों में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दुनिया भर में चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे अधिक खपत की जाने वाली खाद्य फसल है, जो अरबों लोगों का पेट भरती है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2023 में की गई थी और इसे पहली बार 2024 में मनाया गया था।

इस गीत के बाद आइए जानते हैं आज के दिन का इतिहास। 230 मई का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। इस दिन की सबसे प्रमुख घटना 1826 में उदंत मार्तंड का प्रकाशन और 1987 में गोवा का भारत का राज्य बनना है। 1826 पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से दुनिया के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1606 सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी का निधन हुआ। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड सर की उपाधि लौटा दी। 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का राज्य बना।

दोस्तों आइए जानते हैं विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। दोस्तों आज के दिन यानी 30 मई 1498 महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस 6 जहाजों के साथ अपनी तीसरी अमेरिका यात्रा पर निकले। 1981 बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की उनके 8 सहयोगियों के साथ हत्या कर दी गई और देश में आपातकाल लागू किया गया। 1998 पाकिस्तान ने अपना 6ठा परमाणु परीक्षण किया। 2012 भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने।

आइए अब जानते हैं 30 मई को जन्म लेने वाले प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों के नाम। पंडित मुखराम शर्मा हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध पटकथा और कहानी लेखक। वी नारायण सामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री। देबू चौधरी भारत के प्रख्यात और दिग्गज सितार वादक। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों में हैं स्टीवन जेरार्ड इंग्लैंड के महान पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और मैनेजर। इदीना मेंजेल प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका। सिलो ग्रीन जाने माने अमेरिकी गायक और रैपर। विनोना जुड प्रसिद्ध अमेरिकी कंट्री म्यूजिक गायिका। मेल ब्लैक द मैन ऑफ ए थाउजेंड वॉइसेस के नाम से मशहूर अमेरिकी वॉइस एक्टर बनी डफी डक आदि कार्टून किरदारों की आवाज़।

30 मई को दुनिया भर में इतिहास, विज्ञान और कला के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ। आइए जानते हैं प्रमुख ऐतिहासिक निधन। जॉन ऑफ आर्क 1431, फ्रांस के राष्ट्रीय नायिका और कैथोलिक संत, जिन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में अंग्रेजों द्वारा जिंदा जला दिया गया। वोल्टेयर 1778, फ्रांस के महान लेखक, दार्शनिक और नाटककार, जिन्होंने अपने विचारों से प्रबुद्धता के युग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विल्बर राइट 1912, प्रसिद्ध अमेरिकी विमान आविष्कारक, राइट बंधुओं में से एक, जिन्होंने दुनिया के पहले सफल मोटर चालित विमान का निर्माण और उड़ान भरी थी। लियोनिद नॉज ड्रेंच को 2023, रूसी कवि और लेखक। जॉन बिस्ली 2023, अमेरिकी अभिनेता, जिन्हें एवरवुड और रूडी जैसी फिल्मों और टीवी शो के लिए जाना जाता है।

और अंत में आइए जानते हैं आज का सुविचार। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खय्याम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी,
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है। तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, इनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते हैं,
3: बिल होते हैं, उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे।
2: अच्छा, अच्छा।
3: आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी है,
2: ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मानसून सीजन चूहे गाड़ी के जो
2: वायर कुतर जाते हैं,
3: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं, उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
2: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
3: बाकी
2: कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से

0: अपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
1: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं।
0: ओ,
1: रसायन, 7000
0: रसायन।
1: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से टीबी शरीर की बीमारियां होती है, और सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर, पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया,
0: और मुक्त बेस्ट
1: अच्छा, और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
0: वाह।
1: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे।
0: अच्छा।
1: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपया का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है, और जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है, तो जो उसकी वजह से मोर्टेलिटी थी जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए, तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे या जो बीमार कम पड़ रहे, तो ये नोटिफाई किया गया, और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
0: क्या बात है।
1: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
0: चलाया जाए
1: जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी।
0: रूप से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसे होगी, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
1: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है
0: जी,
1: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
0: अच्छा
1: कलीग खा रहे हैं, ले लेना,
0: अच्छा
1: ले लेना, तो छोटी छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
0: जी,
1: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
0: जी,
1: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन।
0: ओके।
1: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं
0: जी,
1: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको।
0: ओह।
1: और किक के वजह से लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है, तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
0: अच्छा।
1: उसको कहते हैं कि निकोटीन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स, वो जो है वो रजिस्टर हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
0: यानी पहले एक ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती है।
1: आगे
0: फिर वो मात्रा बढ़ती जाती
1: है, बढ़ते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरी डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, देन बीमारियां शुरू होती है।
0: अच्छा, फिर

0: वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है वो
1: बीमारी। बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और कोई नोटिस नहीं करता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यानी ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस, उसके भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब ये अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन या कैल्शियम, मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
1: ये
0: साइड देखा गया है कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते तब तक उन्हें हाजत नहीं आती है और वो टॉयलेट नहीं जाते।
1: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है, तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और
0: ऐसे लोग डेंसिटी कम हो जाए,
1: बोन डेंसिटी कम हो जाए, तो ऐसे ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम हो जाती है और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं, तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
0: जी।
1: और ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट ये कैंसर की बीमारी। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में तंबाकू की वजह से होने वाले
0: कैंसर के
1: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
0: ओहो।
1: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है, तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है।
0: ये बहुत दर्दनाक
1: दर्दनाक चीज है,
0: मगर सत्य है,
1: लेकिन ये सत्य है
0: जी।
1: और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है।
0: जी जी, जी। हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
1: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
0: जी जी,
1: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है, वो है एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
0: अच्छा,
1: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
0: ओ, अच्छा।
1: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है कि
0: तंबाकू
1: वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखे तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं, पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारा जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन
0: जी,
1: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है।
0: अच्छा,
1: और बहुत सारे रीजंस है और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
0: अच्छा।
1: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसके जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
0: अच्छा,
1: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
0: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
1: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
0: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है।
1: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
0: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे।
1: yes,
0: मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
1: yes,
0: तो हमें दोनों बातें बताइए।
1: yeah,
0: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं।
1: yes,
0: कैसे
1: yes,
0: होते
1: yes,
0: हैं
1: yes.
0: और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले।
1: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिर्फ हर एक घंटे में खाता है या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
0: अच्छा,
1: उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद

0: कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है।
1: अच्छा,
0: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
1: बेशक
0: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। तो वो नॉर्मल रहने लगती है। देन उसके बाद ब्लड प्रेशर, जो इसलिए हम जब भी एज ए डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उसको पूछते हैं, अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज्यादा ही दिखाने वाला है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता हो तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: हैं। कम हो जाती है, जी जी जी।
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं। देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है। देन डायबिटीज, मैं हमारे पास लोग है जिन्हें तंबाकू छोड़ दी है उनकी डायबिटीज की गोले भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अभी उसकी।
1: अच्छा,
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है
1: हाँ।
0: कि तंबाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई है।
1: क्या बात,
0: तो ये सब उसके फायदे है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे है छोड़ने के बाद। तब यस, ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन, और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा,
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल 4 बार खाऊंगा, 3-3, तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको झटके से ही छोड़ना है।
1: अच्छा,
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रोल सिम्टम 100% महसूस होगा,
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है।
0: तो महसूस होगा ही।
1: हाँ।
0: वो जो विड्रोल सिम्टम जैसे कि वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। पर्टिकुलर डाइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे पास। तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रोल सिम्टम रहता है।
1: अच्छा,
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है।
1: जी जी जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ जाता है
0: बस,
1: जैसा तंबाकू खाने से
0: पहले था वैसा। बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता नहीं।
1: कितनी जरूरी बात है।
0: यस,
1: हमारे श्रोताओं को उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक साथ, और उसके बाद
0: 2 दिन से 2 हफ्ते
1: सोचना ही नहीं, 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते,
0: ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते
1: ये लक्षण रहेंगे,
0: बस विड्रोल सिम्टम,
1: विड्रोल सिम्टम, और उसके बाद वो
0: सामान्य हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह, तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कोप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं।
0: यस,
1: ये क्या होता है, क्या कोप्टा एक्ट क्या है?
0: सी, जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है।
1: जी जी,
0: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको कोप्टा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट।
1: अच्छा, कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोप्टा एक्ट,
0: कोप्टा एक्ट। उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
1: जी जी,
0: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी
0: जो होती है वो भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते है वो न खाए और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है, जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को, और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी एड बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: उसको भी बैन किया है कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले उसको खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहता
1: है, होता तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट वो अलग कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: कि जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह से के लिए यूज होता था, अब वो तंबाकू की वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग खाते पीते उसके लिए, तो सरोगो एड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
1: जी, जी।
0: तो ये इसका उद्देश्य यही है कि

0: तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसकी वजह से जो बीमारियां कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, इनहेलेशन आ गया है।
1: हाँ
0: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका ई सिगरेट आ गई है, उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है।
1: जी जी,
0: उसमें हानिकारक।
1: तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी उतना ही धोखा, उतना ही रिस्क। जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया तो तुरंत उल्टियां होने लगती।
0: यस यस यस। और बहुत बार तो जैसे,
1: लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
0: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको। अगर हस्बैंड स्मोक करता है,
1: जी जी,
0: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है,
1: हाँ,
0: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना।
1: बिल्कुल, हाँ,
0: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है।
1: जी,
0: जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है उसको भी खतरा है,
1: तो उस पर भी असर हो रहा है,
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको। तो
1: जी,
0: द पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है।
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो।
1: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
0: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स।
1: अच्छा,
0: है, मिथ्स है।
1: ऐसा कुछ
0: सी तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
1: बस वो
0: बस उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके। बस बस जैसे शुरुआत में बताया, छोटा जीव है जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा।
1: मरेगा जरूर। तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना चाहिए,
0: एक्सेप्ट करना है हमें,
1: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
0: यस, उसको हमने,
1: ये कैसे हुआ?
0: Yes,
1: कब हुआ?
0: Yeah,
1: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स।
1: अच्छा,
0: या मैजिक चूरण,
1: जादुई चूरण,
0: जादुई चूरण।
1: वाह।
0: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
1: अच्छा,
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरण मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोले जो महाराष्ट्र में,
1: हाँ,
0: तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
1: अच्छा,
0: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूरण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे,
1: हाँ,
0: तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
1: अच्छा,
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
1: अच्छा,
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू को घिस रहे हो।
1: लोग तंबाकू मल के खाते,
0: हाँ, तो उसको कलर भी वैसा ही है उसका।
1: हाँ, हाँ,
0: ना उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है,
1: हाँ,
0: इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटीन के विड्रोल को और कम करती है।
1: अरे वाह,
0: तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है।
0: तो इसके वजह से हमने चूरण बनाया, उसका नाम रखा मैजिक मिक्स।
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स।
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
1: हाँ,
0: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
1: अच्छा,
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ,
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
1: अच्छा,
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे,
1: हाँ,
0: तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
0: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
0: सबके फायदे के लिए। हमने खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा, हाँ,
0: तो आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
0: खुद बनाइए घर पर, खाइए।
1: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
0: और मेन बात, इसको खा के थूकना भी नहीं है।
1: हाँ,
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है। वाह वाह।
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
1: बिल्कुल,
0: सब ये अपने गर्म मसाले फायदेकारक ही अपने बॉडी को,
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
0: यस,
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
0: दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी शोप,

0: सौंफ
1: सौंफ हाँ।
0: और एक आध लौंग,
1: अच्छा
0: उसको मिक्स करके,
1: लौंग तो एक ही ले
0: एक ही
1: रहे हैं,
0: लेना बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल वन, उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में, मिक्सचर होगा वो हबू तम्बाकू सरीका लगेगा,
1: अच्छा लेकिन
0: उसमें तम्बाकू नहीं है, चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी
1: चावल
0: का आटा,
1: अच्छा
0: तो ये आप करके उसको सेम कनिस्टर में
1: तम्बाकू मलने की आदत है,
0: ऐसे ही मल के खाओ,
1: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करें,
0: एक्शन कंप्लीट,
1: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
0: या दबा लो
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो
1: आपके शरीर के लिए फायदेमंद,
0: उसको थूकना भी नहीं है,
1: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तम्बाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तम्बाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी,
0: वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इंप्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है, मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था और वो कृषि बैकग्राउंड से था, उसके घर वाले जो है खेती करते थे, तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से, और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा। ये कितना बड़ा मिथ है आप जरा
0: मिथ सी है, सब मिथ सी है,
1: बड़ी गलत,
0: बहुत गलत फहमी है, ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। जैसे हमने देखे है, आप किसी को अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए बस, खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी जी,
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीड से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए
1: जी,
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कोई भी फॉर्म,
1: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर नसवार
0: नसवाली
1: है,
0: स्मोकिंग है,
1: स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का, बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बातें आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है, तंबाकू की वजह से मनुष्य उसकी शारीरिक मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूंगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री।

0: 30 रुपए में।
1: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
1: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।

0: गुजरात टाइटंस पहुंची, अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें, और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग, इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाजों में, समीर के बोल, संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

0: लाइफ।
1: अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का ओ माय गॉड। इस फिल्म का गाना है कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
6: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा।

0: स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा,
2: बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूं अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आपासा। तो उसने कहा आला बर्फी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के दी चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफर में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव, कभी तेज हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो, या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो। इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सके,

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मजा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, सीआरपीएफ डीजी ने कहा निर्णायक दौर में लड़ाई। राज्य में एसआईआर से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया तेज, अब तक 75% से अधिक कार्य पूरा। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड संपन्न, 11 से 21 अग्निवीरों ने राष्ट्र रक्षा के लिए शपथ। संताल परगना में डेमोग्राफी बदलाव की जांच करेगी भाजपा की हाई लेवल कमेटी, बाबूलाल मरांडी ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग के लिए थोड़ी देर बाद शुरू होगी नीलामी, 271 क्रिकेटरों पर लगेगी बोली। और अब समाचार विस्तार से। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा पहुंचकर नक्सल विरोधी अभियानों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अभियान और रणनीति पर अधिक जानकारी दे रहे हैं चाईबासा से हमारे संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान अब अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। चाईबासा पहुंचे सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोल्हान और सारंडा के बचे हुए नक्सली दस्तों के सफाये के लिए अब और अधिक प्रभावी और तेज प्रहार की आवश्यकता है। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी समन्वय को मजबूत करते हुए पूरे जिले को जल्द से जल्द पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का अंतिम खाका खींचा है। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से इस इलाके में नक्सलियों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए चाईबासा से मैं दिलीप बैनर्जी।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया में तेजी आ गई है। अब तक 75.19% मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद महज एक सप्ताह के भीतर 5,14,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जो मतदाता अभी तक अनमैप्ड हैं, वे 15 जून तक अपने संबंधित बीओलो से संपर्क कर मैपिंग करा सकते हैं। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में आज 1,121 अग्निवीरों ने शानदार पासिंग आउट परेड और भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में जवानों की 24 सप्ताह की कठिन सैन्य ट्रेनिंग का प्रदर्शन दिखा। मौके पर ड्रिल और फायरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वीर जवानों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने नव दीक्षित सैनिकों के समक्ष सेना के गौरव और उनके दायित्वों को रेखांकित किया।
2: आपके कंधों पर देश की रक्षा की बात आ गया है। हमारे देशवासियों ने जिम्मेवारी हमारे ऊपर रखा है, हमें उस पर खड़ा उतरना है। युद्ध क्षेत्र में आए वैज्ञानिक विकास और लेटेस्ट तकनीक को समय पर अपनाकर और उसमें महारत हासिल करके ही हम विजय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण हो रहे डेमोग्राफी बदलाव की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान यह जानकारी साझा की। श्री मरांडी ने स्पष्ट किया कि झारखंड और बंगाल समेत कई राज्यों में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी बदली है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर और चिंता का विषय है।
3: तो अभी जो एसआईआर होगा तो 2003 के बाद जो लोग आए होंगे तो एसआईआर में निकल जाएंगे। जो विदेशी लोग आकर के इलीगल तरीके से यहाँ डेरा जमाए, यहाँ के संसाधनों को कब्जा किए, तो फिर उसको तो मुक्त करना ही पड़ेगा।
0: रांची के आईसीएआर भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और रातू के किंग फिशरीज के

0: बीच सतत मत्स्य पालन और आजीविका विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत जनजातीय युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। संस्थान के निदेशक डॉ. सुजय रक्षित ने बताया कि यह साझेदारी वैज्ञानिक प्रजनन, हैचरी प्रबंधन और नैनो तकनीक को बढ़ावा देकर झारखंड को सतत मत्स्य विकास का मॉडल राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक में बड़ी कार्रवाई की है। ई विद्या वाहिनी पर हाजिरी न बनाने वाले 215 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही 10% से अधिक छात्र फेल होने वाले स्कूलों के सभी शिक्षकों और प्राचार्यों को शो कॉज जारी किया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संभावित बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज गोवा राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी गोवावासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कामना की है कि प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं से संपन्न गोवा राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने इस विशेष दिन पर गोवा की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान और देश के विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले के विभिन्न सरकारी विभागों और केंद्र व राज्य प्रायोजित विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए सांसद ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा खराब ट्रांसफार्मरों को अविलंब बदलने के सख्त निर्देश दिए।
2: बिजली जब कट जाती है काफी दिक्कत होता है, तार का बहाना में 7 दिन कट देता है, तो कट देने के चलते यहाँ पर बिजली का स्थिति खराब होने के पठन पठन से लेकर गर्मी में भी दिक्कत का होना। ब्लॉक वाइज जो एक रिपेयरिंग समिति जो हम वहाँ लोग रहते उसका एक ब्लॉक वाइज टीम बना दिया जाए ताकि वो लोग तुरंत एक्शन में आकर उसको निष्पादन।
0: भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित नेशनल स्कॉलरशिप के लिए सरायकेला के 2 युवा कलाकारों का चयन हुआ है। नीलदीप कुमार साहू को छऊ संगीत और अभिजीत दित्त को छऊ नृत्य के लिए यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिलेगी। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से स्थानीय छऊ कलाकारों में खुशी का माहौल है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रूपये प्रति किलो है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही पेशेवर झारखंड T20 क्रिकेट लीग के लिए अब से थोड़ी ही देर बाद जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी शुरू होगी। इस ऐतिहासिक नीलामी में राज्य भर के कुल 271 चुनिंदा क्रिकेटरों पर बोली लगाई जाएगी। इस टी20 लीग का मुख्य उद्देश्य झारखंड के सुदूरवर्ती जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी हुई युवा क्रिकेटर

प्रतिभाओं को एक बड़ा और पेशेवर मंच प्रदान करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, सीआरपीएफ डीजी ने कहा निर्णायक दौर में लड़ाई। राज्य में एसआईआर से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया तेज, अब तक 75% से अधिक कार्य पूरा। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड संपन्न, 1121 अग्निवीरों ने राष्ट्र रक्षा के लिए शपथ। संताल परगना में डेमोग्राफी बदलाव की जांच करेगी भाजपा की हाई लेवल कमेटी, बाबूलाल मरांडी ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग के लिए थोड़ी देर बाद शुरू होगी नीलामी, 271 क्रिकेटरों पर लगेगी बोली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है? बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहां के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूं, जरूर वहां के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूंगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहां से कहां पहुंचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है, एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूखोता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू कचालू बेटा कहां गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग, जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है, हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पतिदेव को बहुत पसंद है, मक्खन और अचार के साथ।

एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है, और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती है उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है, सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है, मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज है, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी, ऊपर दही से डाल दे फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद, पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो सब्जी या कुछ चीज बना के ले वो आलू की होती है। आलू की सब्जी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीजें हम बना करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि हम जब सफर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज्यादा जो सब्जी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्जी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी

ये भी लिख रहे हैं कि ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा. जी हाँ, कोई भी चीज हो उसे अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए. एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं. गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है. पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गुद कर कढ़ाई में डाल देते थे. कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे. अब तो गांवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है. और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं. और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे. ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है. और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है जो सभी सब्जियों के भाव ज्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मजा है वो बड़ा आता है. और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा. एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं. जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं. बहुत धन्यवाद आपका. चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीजें भी पसंद हो जैसे बर्फी वगैरह, इस तरह की चीजें भी तो उन्हें पसंद आती है. या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फी भी बना सकते हैं. कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फी भी बनती है. तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं. बर्फी फिल्म का स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है. आवाज किसकी है आप?

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्योहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है आलू। समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार, आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी जरूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद जरूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है।

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से

जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मीन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।

0: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वह लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया।

0: उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिनाओ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: उलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: लगता है कुछ ऐसा

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेएसएससी से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। समिति ने जिला, विषय और वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तथा वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। संबंधित विभागों को आवश्यक आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देश भर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा आज कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने यह जानकारी दी। NTA के अनुसार समस्या अब दूर कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को पूरा प्रतिपूरक समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। राज्य के गेकलसूद, तेनुघाट और मैथन सहित प्रमुख जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्थान मुंबई के वैज्ञानिक डॉ. श्रवण कुमार शर्मा ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया है। उन्होंने जलाशयों में वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत जाल और सौर ऊर्जा चालित नावों की जानकारी ली है। मत्स्य निदेशक अमरेंद्र कुमार के अनुसार अब आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के प्रशिक्षण से राज्य में पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मछुआरों की आजीविका में सुधार होने की प्रबल संभावना है। देश भर में जून महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश और अन्य अवसरों को मिलाकर बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य समय रहते निपटा लें। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने CCL के रामगढ़ के गिद्दीसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी नागर गोजे शुभम भाऊ साहिब ने बताया कि तस्करों के पास से 1 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 6 लाख रुपए है।
1: सशस्त्र बल के एफर्ट से 2 लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन एक भागने में सफल रहा। दोनों भी लावालौंग के रहने वाले हैं। जो भाग गया उसका नाम है सरफराज खान। सरफराज खान एक तरह से इसमें खरीदी करने के लिए आया था अफीम का। ये जो 2 लोग थे ये लोग बिक्री के लिए आए थे। अब उनके पास से जो अफीम बरामद हुआ है उसका कुल वजन था 1 किलो 113 ग्राम।
0: जामताड़ा जिले में एक ज्वेलरी व्यवसायी से लाखों रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषणों की लूट की गई है। पुलिस के अनुसार फतेहपुर बाजार में हथियारबंद 5 अपराधियों ने व्यवसायी को रोककर गहनों से भरा बैग छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जामताड़ा जिले में कल देर शाम से शुरू हुए राज्य स्तरीय बालिका वर्ग खो खो प्रतियोगिता में 16 जिलों की टीम भाग ले रही है। जिला खो खो संघ के उपाध्यक्ष चंचल भंडारी ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता का आयोजन करना जामताड़ा के लिए गौरव का क्षण है।
2: जामताड़ा जिला में राज्य स्तरीय बालिका वर्ग के लिए खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो 3 दिवसीय चलना 31 मई को इसका समापन है। इसमें लगभग 16 जिला से टीम आई हुई है और हो सकता है कि और 2 टीमें में शिरकत करे। गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जामताड़ा जिला को मिला।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मन चाहे गीत, इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाई।

ख्वाहिश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से ये पत्र आया है हमारे पास। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली, आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी मीत शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी।
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर,
3: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
2: कभी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे, वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
1: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओह नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
1: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मई पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
1: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
1: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
3: इसमें हर्ज क्या है? सच तो यही है ना।
1: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या? मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
1: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ने से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
0: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ, मैं लॉरेंस हूँ भाई।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका
2: और
0: लॉरेंस।
2: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
0: गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेजी।
2: नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
2: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ,
0: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसे
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
1: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
3: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
3: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
3: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
3: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
3: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
3: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
3: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे, टेरर।
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है।
3: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
3: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
3: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
1: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
3: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
3: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझाकर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
3: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास कर लूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
3: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
3: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
3: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
3: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकती हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
3: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
3: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
1: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
4: वो बेनी कहाँ है?
1: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
4: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
1: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
4: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
1: डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
4: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
4: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
1: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
4: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं।
5: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
0: ओ डॉक्टर,
5: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता।
0: इस पैकेट में क्या है? बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
5: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
0: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
5: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
0: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
5: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। सी यू अगेन, बाय।
1: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी।

0: पैकेट कहाँ से उठा लाए?
1: तुम्हारे लिए एक चीज है।
0: अच्छा देखो तो।
1: लो देख लो।
0: साड़ी? ये अब काहे को? और यहाँ
1: मेरी ओर से प्रेजेंट।
0: प्रेजेंट?
1: हाँ तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
0: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
1: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर साड़ी पसंद आई?
0: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
1: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़े ना समझो। तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देख रोने लगी? नहीं नहीं नहीं रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाओ। नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ये ये ऐसे ऐसे।
0: अरे क्या क्या हुआ आपको? यहाँ लेट आइए, लेट आइए ना। बेनी बेनी बेनी कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गए।
2: Oh, no.
0: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
2: आखिर ये हुआ कैसे?
0: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांच बाद मुझे होश आया। मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
3: डेजी ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
0: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
3: दुख तो मुझे भी है डेजी। मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
0: मैं अब क्यों जीवित हूँ?

0: चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
1: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
2: अच्छा?
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
3: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
4: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
6: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
7: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
8: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
7: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं।
10: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
11: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेएसएससी से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। समिति ने जिला, विषय और वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तथा वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देश भर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा आज कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने यह जानकारी दी। NTA के अनुसार समस्या अब दूर कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को पूरा प्रतिपूरक समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। सहायता के लिए एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। देश भर में जून महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश और अन्य अवसरों को मिलाकर बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य समय रहते निपटा लें। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने सीसीएल के रामगढ़ के गिद्दीसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूं। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे कहां अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
12: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
12: हाँ बिल्कुल,
2: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है, कहीं पानी गिरा के चली जाती है, कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
12: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
2: जी,
12: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
2: समझदारी,
12: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है,
2: हाँ।
12: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
2: हाँ।
12: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
2: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
12: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी, बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई। और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
2: जी,
12: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी, जैसे कलर लगाया उसको, सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो, और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
2: यानी इस साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही
12: कर रही हैं
2: और गुंजा
12: करती रहूंगी।
2: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में

0: बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
1: अच्छा
0: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
1: जी।
0: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
1: जी,
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
0: हाँ,
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
1: जी,
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को।
1: हाँ।
0: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ। साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: है ना।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद आवाज।
0: हाँ बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद

0: किया हूँ।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त। बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत तो दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की है उस जोगीरा में,
1: हमने देखा जोगीरा में मार खा के की हूँ।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं तीन चार दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद थी, उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया।
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
0: हाँ,
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सचिन। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो दो तीन चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था, अंदर तो आ गया
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके। तो मुझे नहीं लगता कि वो, पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को,

0: हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाए, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी।
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी।
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
1: हाँ, जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं।
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: और जी, बहुत जी, मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी, तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो नहीं करेंगे।

0: वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद। जी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
0: नीचे का जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन

0: बनाना चाह रहे हैं
1: वही तो सेम फिल्म,
0: हाँ सेम फिल्म, लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म जी, से जी। तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती
0: हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
1: हाँ जी जी उसके बाद ही,
0: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी, जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी
1: जी, जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: बहुत
0: है
1: अच्छी हाँ।
0: तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा,
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा,
0: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा,
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं राजकुमार आ गए वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी, तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम
1: हाँ।
0: और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली
0: शादी कर ली बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए हाँ। थी लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी
0: होता ना दिमाग में शादी फिल्म लाइन की लड़की है
1: हाँ।
0: ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने, फिर
1: मैं

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं, यूपी की भोजपुरी फिल्म में, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक ही तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी जी, लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते पीते
1: हाँ
0: जी,
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। हाँ। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
1: देखिए कौन

0: दिशा में तो सब गाते हैं
1: जी,
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा
1: बहुत,
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत है,
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी,
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था, उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे पसंद है नहीं अच्छा, और ये और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माय गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो उनसे
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राजबाबू राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा,
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है, तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई, अल्लड़पन कहते ना
0: ये, कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई,
1: ये बात है। मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं, और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
1: नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी, तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
0: अरे वाह,

0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: एक
0: बोल,
1: बार
0: दिया।
1: में बोल दिया।
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो, तो
1: यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है। पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे, हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत करो अपनी,
0: हाँ, अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि अपने मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ,
0: अब देखते हैं क्या होता है।
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ,
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी,
0: हाँ,
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ,
0: हाँ,
1: पर आए हैं। हाँ, आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी,
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
1: ऊर्जा सकारात्मक।
0: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको, सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ,
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीजें हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे क्या, मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: क्या बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमोसफियर अपने आप ठीक होगा, तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम
0: मैं
1: भी सुन लें।
0: कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी है, सब कुछ है
1: जी।
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
1: जी।

कार का चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की,

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी।
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माए
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
0: जी।
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियां, वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है, कैसी है पहेली
0: जी,
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। अच्छा। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
0: अरे वाह।
1: और न्यूयॉर्क

0: न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
1: फिल्म है कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहेली,
1: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी, अच्छा लगता अच्छा है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड मुख्यालय से आज महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो नामक एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उपविकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता रथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक, प्रचार सामग्री और उद्घोषणाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। पलामू जिले से पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटने वाले 3 बदमाशों को

0: गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक राजेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची के गले से सोने का लॉकेट काट लिया था। इस दौरान ब्लेड लगने से बच्ची जख्मी भी हो गई थी। साहिबगंज जिले के बोरियो में हुए एक सड़क हादसे में आज दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर होने से यह हादसा हुआ। एक मृतक की पहचान राधानगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है, जो गुड्डा जिला पुलिस बल में स्थापित थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 5:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले इन सब किसान भाई बहन के प्रशांत के दिने से जोहार और सब गोटे के कार्यक्रम में स्वागत हो किसान भाई बहन। आज ये कार्यक्रम में हमर संगे अथी यशमिंदर भाई। यशमिंदर भाई तोहरो जोहार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के हम अपन दिने से जोहार प्रणाम करो हिन्न और कार्यक्रम में शामिल प्रशांत भाई तोहरो भी जोहार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इसमें देखा कि आज 30 मई है और 30 मई के अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनावल जाए और ये आलू दिवस है ई तोहरा 2026 से 2024 से एक शुरुआत करल गेल है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के दने से। और ई दिवस के मनावे के पीछे जो उद्देश्य है आलू उपजावे वाले किसान भाई बहन खास करके महिला किसान के प्रोत्साहित करे के और सम्मानित करे के और गांव से गरीबी के कम करे के एकर संगे संगे खाद सुरक्षा के बढ़ावा देवे के एकर पीछे उद्देश्य रहले है।
4: बड़ी बेस बात तो कहला प्रशांत भाई, आज जो है से अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है और अगर हम बातचीत करिए कि एकदम सही जैसे तू बतेला कि एकदम आलू बुनिया बुंदी जो है भटूर के तीसरा सबसे ज्यादा खाए वाला फसल है। हाँ। किसान भाई बहन के पास अगर कोई भी अगर सब्जी उपलब्ध ना हो पा रहा है चाहे वो हरा सब्जी हो तो उनका पास इतना जरूर उपलब्ध रहो है कि कोई भी व्यंजन हो है। हाँ। कोई भी सब्जी हो है तो ओकरा में आलू के ओकरा से अपन कोई भी वैरायटी या सब्जी बना देते हैं।
3: बिल्कुल सही बात।
4: से क्या है कि विटामिन सी पोटेशियम और जे फाइबर बेस्ड जे मात्रा के पावर जे पावल जा सके अगर में।
3: हाँ।
4: और हम इनके खातिर जो है भारत देश के दूसरा सबसे ज्यादा पैदा होने वाला ही फसल है।
3: बहुत बढ़िया बात है भाई कि देखा कि आलू के जे बिना हम इनके कोई भी

0: आलू ऐसा चीज हो कि अगर खाए से कहियो
1: मन टूटे वाला ना।
0: बिल्कुल। और सब्जी के संगे संगे तुरा सीजन भाई मिलतो कि तू भिंडी सीजन में खेला, पटल सीजन में खेला, मटर सीजन में खेला, लेकिन आलू है सालों भर खाए वाला, सबसे ज्यादा पैदावार करे वाला दूसरा देश है दुनिया में, और सबसे ज्यादा खाए वाला तीसरा देश है।
1: सही बात है।
0: तो कार्यक्रम में हम इन आगे भी बढ़वे और बहुत सा चीज है जानकारी लेके आए लिए और आगे भी बातचीत करवे। यशवंद्र भाई आप धरे किसान भाई बहन के सुनो ये जरूरी संदेश। हाँ।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जरूरी संदेश के बाद अब चलो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बारे में बातचीत कर रही है। यशवंद्र भाई, जैसा कि देखा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन भारत सरकार के दने से चलवल जा रहा है एक कृषि विकास योजना है। एकर लक्ष्य है देश में चावल, गेहूं, दाल, मोटा अनाज और पौष्टिक अनाज के उत्पादन बढ़ा करके खाद्यान्न सुरक्षा और पोषण स्तर के सुधार करे के है।
1: बिल्कुल, एकर में कहा है प्रशांत भाई कि सरकार के द्वारा जो पोषण मिशन के बारे में तो बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन जो है,
0: हाँ,
1: एकर में कहा है कि किसान भाई के लिए मुख्य उद्देश्य एकर में कहा है कि किसान के जो उन्नत तकनीक हो है,
0: हाँ,
1: और बीज देकर जो चावल, गेहूं, दाल और मोटा अनाज जिसे कहा जा सके श्री अन्न के उत्पादन एकर में है से एक मुख्य रूप से बढ़ावा देने के बाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक बात कहा है कि यहाँ के जो मिशन से जो जुड़ल मुख्य जानकारी है किसान भाई के, तो में कहा है कि सबसे पहले एकर में है कि बेहतर, जिसे अगर कह जा सको कि जो अनाज हमें उत्पन्न करो है, तो अगर एकर में किसान भाई बहन अगर बेहतर तरीके से अगर मोटा अनाज के भी अगर एकर में एक रूटीन बने थीं, हाँ, खरे को बने थीं कार्यकल्प कि हम मोटा चावल के अनावे अगर अभी जिसे मोटा अनाज के समय भी बिल्कुल आग लो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जैसे मड़ुआ की खेती, हाँ, तो किसान भाई बहन अगर मड़ुआ की खेती करो थीं जिससे इस बार जो संभावना व्यक्त करल गया है मौसम विभाग के माध्यम से कि बारिश की संभावना इस बार पहले की अपेक्षा कम है, तो हम कहे ना ऊपरी सतह जो है जमीन है,
0: हाँ,
1: जिसे कहा जा सको तीन नंबर या चार नंबर टाँड जो है, तो अगर हम मोटा अनाज की खेती करिए जिसे अभी अच्छी तरह से जुताई कोड़ा कर लिए,
0: हाँ,
1: और तोहरा ये निर्णय करे पड़ते कि हम मड़ुआ दो किस्म के रोपाई करो थी किसान भाई बहन, एक तो बुआई कर रोपनी करो थी जिससे हम धान की रोपनी, हाँ, एक छिटकमा विधि से करो थी, तो तोहरा ये निर्णय लेना हो जिससे तू अगर छिटकमा विधि से अगर तू मड़ुआ की खेती करो है तो ओकर में मुख्य रूप से कहा कि तोहरा ओकर में निकाउन करके ओकर में खुरपी करे पड़ते, और खुरपी करना भी एक तरह से देख ले जिस किसान भाई के पास कौन सा सुविधा है,
0: हाँ,
1: टाँड उनके पास कैसा है, जमीन कैसा है, और अगर खुरपी ना करल चाहो थीन ओके में कोड़ा ना देवल चाहो थीन तो रोपा विधि से खेती कर सको।
0: एकदम बिल्कुल, और देखा कि एक और एक बहुत तरह के एकर में उद्देश्य पूरा करे के लगे सरकार के द्वारा देने लक्ष्य जो बनावल है,
1: हाँ,
0: ओकर में सबसे पहला चीज हो कि अभी बात कर ले मोटा अनाज के बाद, दूसरा बात हो गयो कि उन्नत बीज के है से तैयारी,
1: हाँ हाँ,
0: एकर में ये भी लक्ष्य रखल गेल है कि हमन के किसान भाई बहन के उन्नत बीज के तैयारी कैसे करावे के शुरू करल जाए एकर में, ताकि है से उनका बीज बढ़िया से मिल जाए, ताकि है से फसल के उत्पादन बढ़िया हो सके। एकर अलावे मृदा के स्वास्थ्य आज

0: देखला कि हम इनके माटी के स्वास्थ्य से बहुत बिगड़ल है,
1: बिगड़ल है हाँ।
0: जेकर कारण है से हम इनके किसान भाई बहन के पैदावार में भी प्रभाव पड़ले है। और हम इन बार बार कहते रहे किसान भाई बहन के कि अब रासायनिक खाद है से कम करा और है से जैविक खाद के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करा, गोबर कंपोस्ट के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करा। तो ई चीज है से अवधर के समय में लक्ष्य रखल गया है खाद सुरक्षा अधिनियम जो है ओकर में कि तोरा मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन कीट प्रबंधन ओकर में तोरा ध्यान रखना है और बारे में तोरा प्रशिक्षण भी तोरा है से समय समय पर के जो कृषि विज्ञान केंद्र है के वीके से वहां से मिलत रहे है। ओकर अलावे है कि कृषि जो उन्नत तकनीक है जरा वैज्ञानिक विधि भी बोला थी जे कृषक है से जे वैज्ञानिक जे कृषि वैज्ञानिक हथी वो किसान सबके ऐसे मीटिंग ले करके गोष्ठी करा करके समझाओ बुझा हुआ थी प्रैक्टिकल करके दिखा हुआ थी तो वो सब भी एकर में शामिल है।
1: बात है
0: एकर अलावा है कि बहुत देखा कि आय बढ़वे के संगे संगे खाद्यान्न उत्पादन में भारत के जो है से फसल पर आत्मनिर्भरता हासिल करे के लक्ष्य कर रखल गेल है ताकि हम के किसान भाई बहन के जब आय दुगना हो जाओ एक मतलब आय दुगना होवे के पीछे है कि उनकर पैदावार में दुगना बढ़ोतरी हो गलो है तबे ना एक आय दुगना होता हाँ। तो ई चीज के है से खास ख्याल होकर में रखल गेल है।
1: बिल्कुल अगर किसान भाई बहन के पास अगर आय दुगना हो रहा कहीं से
0: हाँ।
1: जिसे अगर हम 100 रुपया अगर कमा रही किसान भाई बहन कोई भी अनाज बेच के अगर 200 कमा रही
0: हाँ।
1: उनके पास अगर दुगुना आय अगर उनके आ गया है
0: हाँ।
1: तो किसान भाई बहन के भी लगता है कि हमारे फसल के जो मेहनत हम जो कर रही है
0: हाँ।
1: में वृद्धि हो रहा है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल एकदम बेस्ट बात कहला प्रशांत भाई। अब का है कि अपन बातचीत के कुछ समय ऐसा है कि विराम देवे खातिर और किसान भाई बहन संगे सुनो ये एक भेंटवार्ता जो हमें ले लीजिए कि मत्स्य बीज उत्पादन के तैयारी और ओकर तरीका का तरीके से करे चाहिए किसान भाई बहन जैसे से अपन अनुभव साझा करो थी और ये हमें देने से जे हमें जे चर्चा कर जे आज जानकारी दे रहे हमें जे बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार दास थी और एकर से बात कर रहे थे प्रशांत कुमार तो आइए जानकारी सुनो ये।
0: बिल्कुल सुनल जाए।
2: किसान भाइयों समय समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं पशुपालक मत्स्य पालक और किसान बंधुओं से जो अपना अनुभव साझा करते रहते हैं साथ ही साथ विशेषज्ञों की राय भी लेते हैं ताकि उनके राय आपके कार्यों में सहयोग करे। आज हमारे बीच हैं अनिल कुमार दास जो एक मत्स्य पालक हैं। इनसे जानेंगे मत्स्य पालन के बारे में कि ये मत्स्य पालन किस प्रकार से करते हैं और क्या अनुभव रहा है इनका, किस प्रकार से ये इस क्षेत्र में इस व्यवसाय में सफल हैं। तो सबसे पहले अनिल जी आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: जी। अनिल जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि मत्स्य पालन का कार्य कितने वर्षों से आप करते आ रहे हैं?
3: हम 16-17 वर्षों से मत्स्य पालन का काम करते आ रहे हैं
2: जी। मछली पालन के लिए बहुत सी जानकारियां की आवश्यकता होती है जो मत्स्य पालकों को सफल बनाती है। आपने भी जानकारी हासिल किया होगा, इसका प्रशिक्षण लिया होगा
3: हाँ।
2: तो प्रशिक्षण के बारे में बताएं कि किस प्रकार से आपने इसका प्रशिक्षण लिया, कहां से लिया और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा?
3: देखिए जब हमने मछली पालन का कार्य शुरू किए तरकारी लीज का तालाब से तो हमको अच्छा लगा कि फायदा है मछली पालन में
2: जी।
3: तो फिर पता चला कि इसका प्रशिक्षण होता है रांची धुरवा शालीमार में
2: जी।
3: तो प्रशिक्षण में जाने के लिए क्या करना चाहिए पता किए, पता चला कि अपना जिला मत्स्य विभाग से संपर्क करना है
2: जी
3: और वहीं से प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।
2: अच्छा अच्छा।
3: फिर प्रशिक्षण भी कर लिए हम।
2: अच्छा।
3: प्रशिक्षण करने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा
2: जी
3: कि बहुत अच्छा बिजनेस है। तो फिर प्रशिक्षण से आने के बाद एक साल बाद हम अपना खुद का तालाब बनाए
2: जी जी। आपको लगा कि इस व्यवसाय में लाभ है?
3: लाभ है।
2: एक तो आपने अनुभव किया लीज की जमीन पे सरकारी तालाब के द्वारा, उसके बाद है सो प्रशिक्षण लिया, तब जाकर के फिर अपना तालाब आपने बनवाना शुरू कर दिया
3: जी।
2: अभी आपके पास अपने तालाब कितने हैं?
3: मेरे पास 9 तालाब है।
2: 9 तालाब अपने हैं। तो उन 9 तालाब जो है आपके पास वो किस किस तरह के हैं?
3: मेरा 6 तालाब नर्सरी तालाब है
2: जी
3: और 1 रियरिंग तालाब है।
2: अच्छा अच्छा।
3: और 2 संचयी तालाब बना रखे हैं।
2: अच्छा। तो सबसे पहले हमें नर्सरी तालाब के बारे में जानकारी दीजिए कि नर्सरी तालाब की तैयारी किस प्रकार से होता है और उसमें किस तरह की मछली पालन करते हैं आप?
3: नर्सरी तालाब बच्चा उत्पादन के लिए
0: अच्छा
3: बनाया जाता है
0: जी।
3: जैसे कि नर्सरी तालाब में स्पॉन
0: जी
3: लगाते हैं, 21 दिन बाद
0: जी
3: हम लोग उस मछली बच्चा को रियरिंग तालाब में ले जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।

0: वहाँ पर हम लोग 1.5 महीना 2 महीना जैसे समझ में आता है रखते हैं, उसके बाद संचयी तालाब के लिए
1: अच्छा
0: उसको बिक्री करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो बच्चा जो स्पॉन आप बोल रहे हैं कितना साइज का हो जाता है जब आप उसको बिक्री करना शुरू करते हैं?
0: 1.5 इंच 2 इंच फ्राई साइज का।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ जैसा कस्टमर का डिमांड हो। बहुत सा किसान भाई फ्राई साइज में डिमांड करते हैं, फ्राई साइज में देते हैं। बहुत सा किसान भाई अंगुलिका साइज में
1: जी
0: मांग करते हैं, तो उनको अंगुलिका साइज में देते हैं
1: जी।
0: और बच्चा जो बच जाता है उसको एयरलिंग बना देते हैं
1: जी। तो अब हमें आप बताएं कि ये सीजन कौन सा होता है, कौन सा समय होता है जिस समय आप हैसो स्पॉन को हैसो जो आप बता रहे हैं फ्राई साइज में आप तैयार करते हैं और किसान लोग लेने आते हैं, वो कौन सा सीजन होता है?
0: सीजन अप्रैल
1: जी
0: मई का माह में हम लोग
1: वो तैयार बीज को
0: तैयारी में लग जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, आप तैयारी में लगते हैं बीज बेचने के लिए या फिर बीज उत्पादन के लिए?
0: बीज उत्पादन के लिए
1: जी
0: अप्रैल मई में हम लोग स्पॉन लगा देते हैं तालाब में, और जब मानसून आने के बाद बारिश शुरू होता है तालाबों में पानी जम जाता है
1: जी,
0: तब मछली पालक किसान भाई आते हैं बीजा लेने के लिए, उन लोगों को बीजा देते हैं
1: जी।
0: उस समय जिनको जो साइज का जरूरत हो उस साइज
1: हाँ
0: उस हिसाब से देते हैं
1: जी। बिल्कुल, स्पॉन की तैयारी आप फ्राई साइज में करते हैं, एयरलिंग में करते हैं, वो बीज की तैयारी हो गई
0: जी।
1: अब आप है सो उस बीज को है सो अपने नेक्स्ट तालाब जो होता है जिसमें पालन करते हैं आप बड़े साइज होने तक, वो कैसा तालाब होता है आपका?
0: वो बड़ा तालाब होता है
1: जी।
0: तालाब के क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग बच्चा छोड़ते हैं
1: जी।
0: हाँ, 1 एकड़ के तालाब में 2.5 से 3 हजार अंगुलिका साइज का
1: जी
0: मछली बच्चा हम लोग डालते हैं, और किसान को भी सलाह देते हैं जो बच्चा लेने आते हैं
1: जी।
0: तो उस हिसाब से तालाब का जैसा क्षेत्रफल रहता है उस हिसाब से बच्चा हम लोग देते हैं और हम लोग खुद का डालते हैं
1: जी। तो अंगुलिका साइज को दूसरे तालाब में ट्रांसफर करने में ज्यादा फायदा होता है
0: जी,
1: बनिस्पत ये छोटे जो स्पॉन होते हैं जीरा साइज होता है या फ्राई साइज के
0: जी,
1: क्योंकि अंगुलिका होता है तो साइज मतलब कि एक उंगली से ज्यादा होता है।
0: हाँ, एक अंगुलिका साइज का होता है
1: जी,
0: इसलिए अंगुलिका नाम रखा गया है।
1: अंगुलिका
0: ही साइज का होता है,
1: अंगुली के साइज का होता है इसलिए अंगुलिका नाम रखा गया है। तो इससे ज्यादा फायदा कैसे है बाकी के बनिस्पत?
0: देखिए, तालाब में हम लोग का प्रयास रहता है कि जितना बड़ा से बड़ा बच्चा छोड़ा जाए
1: जी,
0: कम समय में मछलियों का तैयारी लेने के लिए जल्द से जल्द बड़ा से बड़ा बच्चा ही छोड़ना चाहिए
1: जी। यानी कि छोटा वाला जो अधिक समय लेता है तैयार होने में, तक अंगुलिका में कम समय लेता है
0: जी।
1: और अंगुलिका जब बड़ा मछली होता है तो समझिए कि बहुत सारे जलजीव हैं जो मछलियों के दुश्मन होते हैं, उनका ग्रास बनता है तो उससे मछलियों का बचाव हो जाता
0: है।
1: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए छोटी मछलियां को सब है सो खाने के प्रयास में रहती है, खा भी जाती हैं, जिससे ऐसे लोग किसान सोचते हैं कि हमारी इतनी मछली यहाँ तालाब में हम डाले हैं तो अनुमान है कि इतना निकलेगा, लेकिन यहाँ ये होता है कि छोटी मछलियों को बहुत सारे जलजीव हैं जो खा जाते हैं। लेकिन अंगुलिका लेने से फायदा ये है कि जलजीवों से उसकी रक्षा हो जाती है, वो अपने ऐसे सर्वाइवल स्थिति में आ जाता है ताकि वो अपना बचाव कर सके
0: जी।
1: बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये बताएं कि बड़ी मछली पालन के लिए तालाब होता है एक मौसमी तालाब
0: जी,
1: एक सदाबहार तालाब होता है
0: जी,
1: दो तरह का तालाब होता है, दोनों तालाब ज्यादा बेहतर कौन सा होता है?
0: ज्यादा बेहतर तो मछली बीज उत्पादन के लिए मौसमी तालाब
1: जी
0: अच्छा होता है, और बड़ा मछली करने के लिए सदाबहार तालाब
1: जी
0: होना चाहिए।
1: यानी कि सदाबहार तालाब में हमेशा पानी बना हुआ रहता है
0: जी,
1: और उसमें मछलियों का चारा है सो अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है
0: जी।
1: इसीलिए अब हमें ये बताया कि मौसमी तालाब अभी है सो मई का महीना शुरू हो गया है, और मई के महीने में ये जो मौसमी तालाब है उसकी तैयारी हो सकती है?
0: तैयारी तो तालाब का हम लोग फरवरी मार्च से ही शुरू कर देते हैं
1: जी,
0: पानी खत्म हो जाने के बाद। जैसे बहुत सा तालाब में मई अप्रैल में
1: हाँ,
0: जैसा मौसम रहा गर्मी का उस हिसाब से पानी सूखता है, तो अप्रैल मई में भी तैयारी करना पड़ता है
1: जी,
0: करते हैं।
1: तो तैयारी करने के लिए क्या क्या करना होता है, हम कैसे तैयारी करें?
0: तैयारी के लिए सबसे पहले तालाब के चारों बगल घास कूड़ा करकट का साफ सफाई करना पड़ता है
1: जी,
0: बहुत सा झाड़ियाँ हो जाती है सबको सफाई करना पड़ता है
1: जी,
0: जुताई करना पड़ता है, जुताई समय चूना डालना पड़ता है, चूना डाल करके जुताई करना पड़ता है
1: जी,
0: गोबर भी हम लोग डालते हैं। उसके बाद पानी जब लग जाता है
1: अच्छा अच्छा
0: बारिश होने के बाद, तो फिर हम लोग पानी का पीएच

0: जांच करके उसमें हम लोग जैसे बच्चा को उत्पादन करना हो पीएचई सब जांच करते हैं
1: जी,
0: उसके बाद उसमें स्पॉन सब लगाते हैं।
1: मौसमी तालाब में ईयरलिंग डाला जाए या फिर अंगुलिका बोल रहे हैं तो अंगुलिका डाला जाए तो वो उसके लिए बेहतर हो सकता है या फिर स्पॉन की तैयारी ही उसमें हो सकती है केवल?
0: अगर पानी का साधन हो तो हम लोग पहले फरवरी मार्च में अगर तालाब सूख गया हो तो ठीक है, अगर नहीं सूखा हो थोड़ा बहुत पानी हो तो उसको निकाल करके सुखा करके जुताई कोड़ाई करके उसका कूड़ा करकट निकाल करके और फिर पानी भर के उसमें हम लोग स्पॉन लगा देते हैं
1: जी,
0: ताकि हम लोग का स्पॉन का तैयारी जून जुलाई तक ले हो जाए
1: जी जी।
0: और जिसमें नहीं कर पाते इसमें जिस तालाब में संभव नहीं होता है उसमें फिर हम लोग पानी का मैंने व्यवस्था ना हो संभव ना हो बीज उत्पादन करना
1: जी,
0: जो कि समय पे हमको बीज तैयार मिले तो उस तालाब में हम लोग बड़ा मछली ही तैयार करते हैं
1: जी,
0: अंगुलिका साइज एयरलिंग मछली डाल करके।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यानी कि आप तालाब है सो जीरा या फिर बीज उत्पादन के लिए आप पानी अगर प्राकृतिक पानी नहीं पड़ रहा है तो आप ऐसे पानी भर करके भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर बड़ा तालाब है तो आप उसमें ऐसे मौसम के अनुसार उसमें है सो अंगुलिका का पालन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने पप्पू जी, और बेहतर तरीके से आप मछली पालन का कार्य कर रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको इस कार्य को करते हुए, इसमें सफलता पाते हुए। तो आपने अपना अनुभव साझा किया और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
1: तो देखा यशवंदर भाई, अब धर जानकारी सुन लिए मछली पालन के बारे में कि मत्स्य बीज उत्पादन है से ओकर करे के का तरीका है, कैसे कैसे और तैयारी करो थी, एक बारे में जानकारी देवतल थी अनिल कुमार दास। और अब जानकारी के बाद चलल जाए तनी गीत ना धोवे चाहिए
2: हाँ,
1: और किसान भाई बहन के सुनो ये एगो बढ़िया सा गीत
2: हाँ।

0: गीत के बाद अब चलिए चले जाए बाजार देने यशवंदर भाई।
1: हाँ,
0: और बता दिए किसान भाई बहन के कि आज के बाजार भाव का रहले साग सब्जी के, तो लाल आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो रहले, सफेद आलू 12 से 15 रुपए प्रति किलो, प्याज 15 से 20 रुपए प्रति किलो, फूलकोबी 50 से 60 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 30 से 40 रुपए प्रति किलो।
1: और ये पटल के जो भाव है प्रशांत भाई, तो पटल जो है 20 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो है।
0: हाँ।
1: भिंडी 10 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलो है।
0: हाँ।
1: नेनुआ जो है 15 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलो है।
0: हाँ।
1: कद्दू 15 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलो है। और ये हरा मिर्च जो है प्रशांत भाई,
0: हाँ,
1: कि 80 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो है। शिमला मिर्च 40 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो।
0: और वहीं पर गाजर के जो कीमत है 15 से 20 रुपए प्रति किलो, बीट 20 से 30 रुपए प्रति किलो, फरस बीन 50 से 60 रुपए प्रति किलो, मुराय 20 से 30 रुपए प्रति किलो, धनिया पत्ता 80 से 100 रुपए प्रति किलो, आदि 120 रुपए से 140 रुपए प्रति किलो, खीरा 20 से 25 रुपए प्रति किलो, टमाटर 15 से 20 रुपए प्रति किलो, लाल साग और पालक साग 15 से 20 रुपए प्रति किलो रहे। हाँ।
1: तो देखो आज के जे अधिकतम तापमान, आज के मौसम के जे अधिकतम तापमान प्रशांत भाई,
0: हाँ,
1: से 35 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम जो है से 27 डिग्री सेल्सियस है।
0: हाँ।
1: आर्द्रता जो आज के है से 51% है।
0: और कल जो तापमान रहे के संभावना है वह है से ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस। हाँ। रहे के संभावना है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़े लगे भाई, तो देखा कि मौसम में उतार चढ़ाव तो हो रहा भाई।
1: हाँ, हाँ।
0: अभी देखा तनी ठंडा ठंडा महसूस हो रो, इन्हें पनिया बूंदी होलो था।
1: हाँ।
0: तनी बदरी कर लो था, न तो बड़ी है से गर्मी बढ़ल ले, तो थमिन के गोरु डांगर सब हकाका के सब रह जहाल थी।
1: हाँ, सही
0: गर्मी
1: बात
0: से परेशानी हले जादे, लेकिन अवधर के समय में गर्मी से परेशानी न, ओकर संगे संगे हमिन के ओकर आर ध्यान रखे के जरूरत है। देखा हम इनके घरे है से दुधारू पशु भी रहो है यशविंदर भाई, जो दुधारू पशु के हम इनके है से ओकर खान पियन पर है ओकर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ओकर रख रखाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
1: कि
0: बहुत तापमान बढ़ल है तो ओखिन के कैसे ठीक से खान पियन देवल जाए, ओकर खान पियन में का देवल जाए, एक बारे में थोड़ा सा बातचीत करिए।
1: जैसे देखा कि खान पान की बात है, जहाँ तक अभी खास तौर पर देखा जा रहा है कि जे पानी परुआ जे बेमौसम भी बारिश हो जा रहा है।
0: हाँ।
1: तो एक में कहा है कि जे नया घास आ रहा है प्रशांत भाई।
0: हाँ।
1: तो नया घास से आवे पर जा है कहा है कि जे वो अच्छी तरह से फुनफुना गेल है और जानवर के चारा जुकुर भी हो गया है।
0: हाँ।
1: तो जब चारा ओकरा चारा के प्रयोग कर रहे थे तो कि कहा जा सको कि प्रत्यक्ष रूप से अगर देखल जाए तो पतला पैखाना तो जानवर करते ही करते हो।
0: हाँ।
1: कहे कि नया घास है, कौन सा घास खा ले वो पशु के पता ना चल रहा है, पर कहा है कि हरा चारा दे के वो खा ले रहा।
0: हाँ।
1: लेकिन नफा और नुकसान के ओकर पास पता ना है कि हमारा नफा नुकसान कहा हो सको।
0: बिल्कुल।
1: तो किसान भाई बहन की खातिर एक चीज जरूर ध्यान देवे पड़ते कि ये अभी टीकाकरण के समय अभी हो।
0: हाँ।
1: खासतौर पर बरसात आवे के मैंने आ ही गया है लगभग 15 से 20 दिन में मानसून प्रवेश कर रहे थे, लेकिन कहा है कि किसान भाई बहन से हमें निवेदन करो ये आग्रह भी करो ये कि अपन अपन पशु के समय से टीकाकरण करा रहे थे। और टीकाकरण कराने से उनका का फायदा होता है कि जे भी चारा अगर किसान भाई बहन गलती से खा जा रहे थे, कोई ऐसा घास हो है कि मनुष्य भी या किसान भाई बहन भी वो ना परख पा रहे थे कि कौन सा घास किसान के जो पशु रख रहे थे खा ले रहे, ये पता ना है। पर कहा है कि टीकाकरण अगर सही से उनका हो जाए है खोरहा चपका मुंह पका।
0: हाँ।
1: ये भी बीमारी आ हुआ है, किसान भाई भी नौकरा अच्छी तरह से ओकरा इलाज करा सको थे।
0: बिल्कुल। और संगे संगे हम उनके खान पियन के बारे में ध्यान देना भाई, कि हरा चारा तो दे रही है, साथ साथ हम इनके जो सूखा चारा है
1: सूखा चारा
0: वो जरूरी है, और ओकर साथ मिनरल मिक्सचर जो है जरा खनिज लवन कहल जाए वो बहुत जरूरी है अपन पशुधन के देना। कहे कि देखा जब मिनरल मिक्सर पड़ो है तो ओकर से शरीर में ओकर खून के मात्रा बढ़ो है, ताकत बढ़ो है, ओकर हड्डी मजबूत हो है, दूध उत्पादन करे के क्षमता बढ़ो है, संगे संगे है से गर्भ धारण करे के सही समय से।
1: हाँ,
0: गर्भ धारण भी करो थी तो ई खातिर है से उनखिन के खनिज नवल है जे संतुलित मात्रा में भोजन के साथ साथ जरूर देती, ताकि उनका रह से पशुधन अच्छा से अच्छा उत्पादन दे, बढ़िया से बढ़िया, और उनका ऐसे आमदनी बढ़ावे।
1: किसान भाई बहन की भी ध्यान रखे पड़ते प्रशांत भाई कि कहीं भी चारा मिल जा रहा अभी, पर कहा है कि गढ़ा नाला के पानी किसान भाई बहन थोड़ा पियावे से परहेज कर रहे थे, स्वच्छ पानी ही अपन घर के पानी पिए थे, ताकि जैसे पशु के सेहत पर थोड़ा सा खराब असर ना पड़े।
0: बिल्कुल, अतनी हम बता दिए किसान भाई बहन के कि मिनरल मिक्सर जैसे कैसे अगर भोजन में मिलाना है, तो देखा छोट पशु है जो बढ़ा वाला अवस्था में है, जरा कड्डू उड्डू को छोटा बाछा बाछी को ही है, तो 15 से 20 ग्राम है सो रोज ओकरा है से मिनरल मिक्सर देना है खाना के साथ साथ। अच्छा, जो कम दूध देवे वाला जानवर है वो जो बड़ा है ओकरा है 30 से 50 ग्राम है से रोज देना है मिनरल मिक्सर, और जो ज्यादा दूध देवे वाला पशु है ओकरा 50-50 ग्राम सुबह शाम करके मिनरल मिक्सर देवे के लगे। तो एक साथ कार्यक्रम किसान वाणी से हम इनके विदा लेवे के बेरा भे गए है यशवेंद्र भाई। तो हमारा किसान भाई बहन प्रशांत की विदा देती
1: और हमारा यशवेंद्र के
0: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, भाई सुनते हमारे ग्रामीण भाइयों को संबोधित करता कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी ग्राम विभाग भवनों का प्रशांत की ओर से सप्रेम नमस्कार और इस कार्यक्रम में स्वागत है सभी का। ग्राम विभाग भवन आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जसविंद्र। जसविंद्र आपको भी नमस्कार।
1: किसान हमारी खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन रहे सभी ग्रामीण श्रोता बंधु को भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शामिल प्रशांत जी आपको भी मेरा नमस्कार।
0: देखिए जिस प्रकार से हम लोग जान रहे हैं कि मई का महीना अब समाप्त होने चला है और इस मौसम में बहुत सारे हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं, कृषक भाई बहन हैं, वो खेती बाड़ी का कार्य है बड़े जोर शोर से करते हैं। खास करके मई के महीने में जुताई कोड़ाई उनका सबसे प्रमुख कार्य रहता है, ताकि है सो गर्मी जो गर्मा जुताई जिसको कहते हैं वो कर लेते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, ताकि उनका है सो खेत है सो आगे के लिए तैयार होने के लिए।
1: किसान बंधु अगर जिस तरह से अभी दो तीन बारिश हुई है और किसान बंधु अगर दो तीन बारिश में अगर अपने खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेते हैं, कारण कि नमी तो था ही और किसान बंधु के पास इतना समय भी था और उनके हल चलने के लायक खेत भुरभुरा भी था, तो किसान बंधु अगर इस पानी में या अपने खेत की जुताई अच्छी तरह से अगर कर लेते हैं तो आने वाला जो है सो एक महीना में जो धान का जब बिचड़ा तैयार उनके पास होगा और जब खेत की जुताई करेंगे तो उस समय उनको आसान होगा।
0: देखिए कि वही बात है कि अभी के समय में हमारे कृषक भाई बिल्कुल है सो अस्त व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनका कार्य जो है सो दो तरफा बढ़ जाता है। एक तो खरीफ फसल की तैयारी लगनी शुरू हो जाती है और ऊपर से जो गर्मा लगाए हुए जेठवा फसल लगाए हुए हैं उसका है सो देखभाल होता है, निकाल होता है, बाजार में बिकवाली का समय होता है, तो पूरा समय उनका है सो व्यस्तता भरा होता है। तो ऐसे में किसान भाई बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और कार्य को अपने तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित करते हैं, तो सभी का ये फर्ज बनता है, सभी का फर्ज बनता है कि हमारे कृषक भाइयों को किस प्रकार से प्रोत्साहित और किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपन फसल पे ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा वो मुनाफा ले सके, क्योंकि हमारे कृषक भाई अगर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेंगे तभी हमारे देश की तरक्की होगी और तभी हमारे गांवों का विकास होगा।
1: बिल्कुल सही बात आपने बताया। तो प्रशांत जी जिससे हम लोग बात कर रहे थे, किसान बंधु जो है सो अभी जो इस आगे की जो पानी बारिश हो रही है तो उस समय किसान बंधु अगर अच्छी तरह से अगर अपने काम को अगर कर लेते हैं तो उनके पास जैसे हमने बताया कि धान की रोपाई के समय बेहतर उनके पास एक विकल्प बचेगा। तो हम लोग बातें करेंगे कि किसान भाई बहन बागवानी से उनको कैसे सफलता मिलती है, कैसे लाभ मिलती है उनको। तो सबसे पहले बताएंगे कि बागवानी में जो सफलता का जो मुख्य बात है सही जलवायु का चयन होता है, उसमें उत्तम गुणवत्ता वाले जो पौधे होते हैं जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे टपक सिंचाई और जैविक खाद का जो उपयोग है, झारखंड की जो जलवायु है हम लोग के तरफ और कहा जाए कि मिट्टी को ध्यान में रखते हुए अमरूद पपीता नींबू और आम जैसे फल लगाकर कम समय में बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए कि लगाने का समय होता है जिसकी तैयारी होती है मई महीने से शुरू हो जाती है, क्योंकि इसी महीने में है सो सारे किसान जो नए फलबाग लगाना चाहते हैं वो है सो गड्ढे की तैयारी शुरू कर देते हैं, ताकि गड्ढा का जो है मिट्टी जब निकलता है बाहर तो वो उपचारित होता है धूप से और उसकी जो रुपाई होती है जब बरसात शुरू हो जाता है उस समय है सो पौधे की रुपाई शुरू हो जाती है। तो अभी के समय में जो किसान हमारे गड्ढे कर चुके हैं या फिर नहीं किए हैं तो वो है सो गड्ढा करना शुरू कर दें, ताकि उनका है सो मिट्टी जब बाहर आ जाए ताकि मिट्टी में जो जीव जंतु हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे पौधों को, जो जड़ों को है सो काट देते हैं या जड़ों को नष्ट कर देते हैं जिससे हमारे पौधे मर जाते हैं, खास करके दीमक वगैरह जो होते हैं वो है सो धूप से नष्ट हो जाते हैं और हमारी मिट्टी है सो स्वच्छ हो जाती है, उपचारित हो जाती है। तो इसलिए अभी के समय में वो गड्ढा कर दें और गड्ढा करने के लिए कम से कम है सो 2x2 का फलदार पौधा अगर लगा रहे हैं, आम उम का वृक्ष लगा रहे हैं तो उसमें 2x2 का गड्ढा करें, और नहीं तो पपीते का लगा रहे हैं तो छोटा गड्ढा चलेगा। तो अभी के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि फलबाग का जमीन का चयन करें और उसमें है सो गड्ढा करें, ताकि है सो एक महीने बाद जब बारिश शुरू हो जाएगी तो उस समय है सो रुपाई करने के लिए आपका सो गड्ढा तैयार होगा और आप पौधे ला करके उसमें आप रुपाई कर सकते हैं। ये हो गया फलबाग की तैयारी। इसके बाद भी है हम लोगों की बहुत सारा चीज है कि ये हमारे आम बागवानी मिशन होता है, बागवानी मिशन है जो हमारे मनरेगा के तहत या बीबी जयराम जी के तहत अब आने वाले समय में होगा बागवानी की तैयारी। तो ऐसे में है कि हमारे खेत जब है परत है, बहुत सारा जगह जमीन है जहां पर खेती नहीं होता है, उस जगह पे है सो आप बागवानी का कार्य कर सकते हैं और मिट्टी को उपज बना सकते हैं। जहां पौधे लगे होते हैं, जहां छायादार होता है भूमि, वहां पर आप हल्दी और अदरक की खेती आसानी से कर सकते हैं।
1: एक बात और है कि बागवानी में जो सफलता के प्रमुख चरण है प्रशांत जी, इसे जलवायु और स्थान का चयन तो चुनाव किसान बंधु को करना है
0: जी बिल्कुल,
1: पर क्या है कि जो हम लोग के क्षेत्र जो हजारीबाग के आसपास के अनुसार जो पौधे चुने जाते हैं, जैसे में फल और सब्जियां लगाए जाते हैं जिसे मौसम के अनुकूल हो और स्थानीय बाजार में जिनकी अच्छी मांग हो, जिसे किसान बंधु करते क्या है कि हम अगर यहाँ हम सेब का बगान लगा दें तो हमारा जो जलवायु है हमारा
0: उसके अनुकूल नहीं है,
1: उसके अनुकूल नहीं है
0: जी।
1: तो किसान बंधु को जिसे आपने बताया पपीता बताया अमरूद बताया आम बताया, तो जिस तरह के हम लोग की जलवायु है जिस तरह का मिट्टी है उसके अनुकूल हम लोग काम करना पड़ेगा
0: जी।
1: मिट्टी की तैयारी और खाद पौधों को लगाने से पहले खेत या बगीचे की मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए
0: बिल्कुल,
1: जैसे जैविक खाद जैसे केंचुए की खाद और उचित जल निकासी की व्यवस्था करना सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। होता क्या है कि अगर हम कोई बागवानी में बगान लगाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारा ये देखना है कि हमारा जो पानी का निकासी है, पानी का निकास होना चाहिए। ऐसा हम पटवन जरूर करते हैं, अभी गर्मी के समय में हम खेत को ऐसा मेड़ बनाकर रखते हैं ताकि हमारा पानी जो है सो अपने खेत में रहे
0: जी।
1: पर क्या है कि जब बरसात आने का जो बरसात जब आता है तो हमको उसका विकल्प देखना पड़ेगा कि जिस तरह से पानी का जमाव हम कर रहे हैं ठीक उसी तरह से पानी का निकासी हमारा कैसे होता है। पानी की निकासी ही करना हमारे लिए सबसे बड़ा एक कुंजी है। और उसके बाद जो है सो उन्नत किस्म की जो उन्नत खेती होती है तकनीक होती है, पारंपरिक फसल की जगह जगह तेजी से अगर हम फल देने वाले उन्नत किस्म के पौधे लगावें और पानी की बचत और पौधा की जो है सो अच्छी सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई का उपयोग करें तो हमारे किसान बंधु को बहुत बचत होगा और उनको जो है सो कम लागत में ज्यादा मुनाफा होने का जो है संभावना बना हुआ रहता है
0: जी। बिल्कुल सही बात कहा आपने यशमिंद्र। और अब चलते हैं थोड़ी सी जानकारी की तरफ और साथ ही साथ अपने कृषक भाइयों को सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत।
1: हाँ।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ईद के बाद चलते हैं जानकारी की तरफ और जानकारी सुनवाते हैं मुर्गी पालन आय का अच्छा स्रोत किस प्रकार से है।
1: श्रोताओं,

0: से के घेरा बनाते हैं, कितना चूजा लाते हैं आप?
1: चूजा 4000 मेरा रहता है।
0: 4000, तो 4000 को आप किस कितने गोल में आप बांटेंगे चूजा को, ताकि जो चूजा
1: छह ब्रूडिंग बनाते हैं। अच्छा, 4000 बच्चा के लिए 6 को ब्रूडिंग बनाते हैं, इसमें वही लमसम 900 बच्चा के हिसाब से डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, 6 या 7 ब्रूडिंग बनाते हैं आप, उसके बाद धीरे धीरे आप उसे कैसे फैलाते हैं, कितना बड़ा चूजा होता है जो फैलाएंगे आप?
1: प्रत्येक मतलब कि 3 दिन में हम लोग उसको
0: धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और उसका दाना किस प्रकार देते हैं आप? सब भोजन का क्या प्रबंध है?
1: दाना वो हमें

0: फिट नहीं होता है। हालांकि गर्मी के दिन में थोड़ा सा समय लगता है, 2-3 दिन ज्यादा लगता है प्रोडक्शन।
1: हाँ हाँ,
0: ऐसे बरसात के दिन में प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, तो गर्मी के दिन में क्या है कि 3 दिन का समय एक्स्ट्रा हम लोग
1: को। आप जो छोटा दाना खिलाते हैं तो वो लगभग कितने दिन तक चलाते हैं?
0: 15 दिन छोटा वाला जो देते हैं वो 15 दिन तक चलाते हैं।
1: कौन सा दाना रहता है
0: वो? प्री स्टार्टर रहता है।
1: प्री स्टार्टर, उसके बाद जब 15 दिन के बाद आप धीरे धीरे उसे आप उस
0: क्रम स्टार्ट करते हैं,
1: हाँ बढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो दाना का जो क्रम होता है वो दूसरा क्रम हो जाता है
0: जी। क्रम
1: और पानी का क्या व्यवस्था करते हैं? पानी आप किस तरह से पिलाते हैं, या इसमें वायरिंग है पानी का, या तो फिर डब्बा देते हैं?
0: नहीं तो पाइपलाइन सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें पानी टंकी से आता है।
1: हाँ हाँ,
0: और टंकी में क्या है कि चारों तरफ से बिचाली देके उसको बांध दिए हैं, और उसमें भी पानी बिचाली में भी डाल देते हैं ताकि ठंडा रहे।
1: अच्छा अच्छा, जो अंदर का जो पानी है वो उसमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो,
0: मेंटेन करके रखता है। और जब बच्चा मेरा 20 से 22 दिन का होता है तो उसको इलेक्ट्रोल पाउडर भी देते हैं।
1: टंकी में ही देते हैं या फिर डब्बा में देते हैं?
0: टंकी में ही देते हैं।
1: अच्छा,
0: और दिन में 2 बार पानी चेंज करते हैं
1: दोनों। और लगभग आप दिन भर में जो है सुबह से लेकर रात तक आप कितने बार पानी पिलाते हैं इसे?
0: दिन में 2 बार पानी चेंज करते हैं, फिर शाम में 1 बार डालते हैं, वो सुबह फिर चेंज होता है।
1: अच्छा, ये देखने की वजह से आप टंकी में जो नल लगा दिए हैं उसके बाद नल के माध्यम से पानी आया डब्बा में
0: जी,
1: तो इस डब्बा में पानी रहता है या फिर डब्बा का पानी इसे हटा?
0: पानी ऑटोमेटिक आते रहता है, सुबह सुबह गंदा हो जाता है, तो गंदा होता है बालू पड़ जाता है, उसको सुबह कपड़ा से साफ करते हैं, उसके बाद फिर शाम को साफ करते हैं।
1: अच्छा,
0: दोपहर में भी अगर गंदा होता है हटा देते हैं फिर पानी।
1: अच्छा अच्छा,
0: गंदा पानी पिलाने से भी बीमारी हो जाता है, इकोलाई आता है लोग।
1: तो आप ग्लूकोज इसमें कितना घोल बनाते हैं ताकि जो है सभी मुर्गियां
0: 1000 बच्चा पर

0: अच्छा, इसे
1: वेट बढ़ता
0: ये भी देखा जाता है कि जब चूजा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो किसी न किसी प्रकार का कुछ बीमारी जो है तो मुर्गी में प्रवेश कर जाती है, तो उस समय आप इसे इसके लक्षण को कैसे पहचानेंगे और कौन सा दवा चलाएंगे आप?
1: इकोलाई आता है तो उसका लक्षण ये है कि पैर सूखने लगता है,
0: हाँ हाँ,
1: मुर्गी कमजोर, बच्चा कमजोर हो जाता है, तो उसमें हम लोग टूटिया और विनेगर को बनाते हैं अपने से।

0: बनता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और उसको चलाते हैं, 3 दिन का डोज रहता है। 100 ग्राम तुतिया डालते हैं और 1 लीटर बिस्लरी पानी डालते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: और 500 ml विनेगर देते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: ऐसे तैयार करते हैं और मतलब कि 3000 बच्चा के हिसाब से मतलब 100 ml करके डालते हैं, 100 ml 1000 बच्चा में डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, तो 4000 बच्चा रहता है।
1: तो आप किसी भी बीमारी का जो
0: उसको फाड़ के देखते हैं
1: और उसके बाद जो है सो कभी कभी है कि उसका जो पैखाना है जो मल द्वार है उसका हाँ। जो है गीला आना शुरू होता है वो भी हाँ। क्या एक संकेत है।
0: हाँ, वो भी संकेत है, इकोलाय का संकेत होता है। बीट जो है पतला करेगा, सादा सादा भी बीट करता है, हरा भी बीट करता है। उसे निमोनिया भी हो जाता है, सर्दी जैसे सर्दी आता था, अगर सर्दी का दवा टाइम पर अगर नहीं मिल पाता है तो उसे निमोनिया भी धर लेता।
1: अच्छा
0: है।
1: तो उसके लिए आप क्या उपचार करते
0: हैं? उसके लिए भी स्प्रे करना पड़ता है, B904 का स्प्रे करते हैं, बायो बूस्टर भी मिला के स्प्रे करते हैं, बायो बूस्टर पिलाते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: जिससे निमोनिया धीरे धीरे कम हो जाता है।
1: और ये भी देख लेता है कि बदलते मौसम में किसान बंधु जो मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं तो उनके पास परेशानियां कभी कभी होता है कि मौसम बदल गया या कभी बारिश हो जाता है अचानक, कहीं बादल है
0: आ जाएगा पूरा फार्म।
1: अच्छा अच्छा।
0: छींकने लगता है।
1: हाँ हाँ।
0: इसे पता चल जाता है, छींक हमेशा आवाज चलते रहता है छींकने का ये लोग।
1: हाँ हाँ।
0: उससे पता चलता है कि हमारे फार्म में सर्दी आ गया है।
1: हाँ हाँ।
0: तो B904 का स्प्रे करते हैं, अगर उससे नहीं होता है तो फिर बायो बूस्टर देते हैं।
1: अच्छा अच्छा। और सनी जी, जैसे जो मुर्गियां पूर्ण रूप से ग्रसित हो गई हैं तो उसे आप इसी फॉर्म में रखते हैं या फिर उसका उपचार अलग से करते हैं?
0: उसके लिए अलग बेड बना देते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: ब्रूडिंग उसको अलग करके उसमें थोड़ा सा ज्यादा देखभाल करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: और बाकी मुर्गियों के लिए फिर तो टंकी में दवा,
1: कारण की अस्वस्थ होने के बाद जो है सो और मुर्गियां में फैलने का जो आशंका बन जाता है, तो लगभग आप उसे उपचार जब करते हैं तो कितने दिन में सुधार हो जाता है?
0: 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा। और अगर किसी तरह से अगर नहीं ठीक हो पा रहा है तो क्या आप अपने से उपचार करते हैं? उसके बाद कुछ मुर्गियां अगर ज्यादा बीमार पड़ जाएं तो
0: डॉक्टर का टीम आती है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तैयार हो जाता है बारिश का मौसम में, सबसे अच्छा बारिश का मौसम में मुर्गी का प्रोडक्शन।
1: अच्छा। उसका लगभग क्या तय सीमा उसका है जो तैयार हो
0: जाता है? 35 दिन में 2 kg देता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: 35 दिन में 2 kg का साइज देता है।
1: तो आप जब इसे तैयार करते हैं तो ठीक उस तरह शुरू से लेके 35 या 38 दिन तक आपके पास जो भोजन का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, दवा का जो व्यवस्था है, तो आप जो है सो अपने से देते हैं या फिर आपके पास कोई व्यवस्था है कि आप इसे मजदूर से करवाते हैं? इतने इतने
0: मजदूर भी, 2 मजदूर मेरे पास है।
1: हाँ हाँ।
0: 2 मजदूर है, खुद हम भी देख रेख करते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो मजदूर के ऊपर छोड़ने से क्या लापरवाही हो जाती है।
1: तो आप कम से कम 24 घंटे में कितने बार देख रेख करते हैं ताकि जो है सो कभी देखा जाता है कि मुर्गियां सब इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होने के बाद जो है सो एक दूसरे पर भार हो जाता है तो कहीं कहीं उनको नुकसान होता है चलने फिरने या किसी भी तरह से, तो उसे आप साइड करने का क्या आपके पास व्यवस्था है?
0: गर्मी के दिन में मुर्गियां तो फाइल होकर बैठती है पूरे फार्म में।
1: हाँ हाँ।
0: ठंडा के मौसम में वो परेशानी होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, ठंडा में जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो उसको हीट बॉडी के लिए वो सब जमा हो जाता है और अगर नहीं देखभाल करते हैं तो जो नीचे रहता है वो दब जाता है, दबने के बाद मरता है, उसको मोर्टलिटी होने लगता है।
1: तो आप 15 दिनों के बाद फिर प्रिया स्टार्टर के बाद कौन सा दाना का प्रयोग करवाते हैं?
0: प्रिया स्टार्टर के बाद फिर हम क्रम्स चालू करते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: वो थोड़ा सा प्रिया स्टार्टर से थोड़ा सा मोटा हल्का होता है, मोटा अनाज होता है।
1: अच्छा। तो वो आसानी से खा लेती
0: है? वो आसानी से खा लेते हैं, वो हजम भी बढ़िया से फिर हो जाता है। क्या बड़ा बच्चा 15 दिन के बाद क्या है कि छोटा दाना खाने में उसको दिक्कत होता है।
1: हाँ हाँ।
0: ज्यादा देर तक चोंच मारना पड़ता है, इसके लिए दिक्कत होता है, उससे थोड़ा सा मोटा आता है क्रम्स। ये क्रम्स हमको 30 दिन तक चलाते हैं, उसके बाद आता है फिनिशर प्लेट।
1: अच्छा।
0: वो उससे भी मोटा रहता है, दानादार रहता है।
1: तो आप जब 38 दिन के बाद इस फॉर्म को आप कितना दिन रेस्ट देते हैं, कितना दिन आप छोड़ते हैं ताकि फिर अगला लॉट आप इसमें डाल सके, लगभग इसका क्या अंतराल रहेगा?
0: 20 दिन का अंतराल रखते हैं।
1: 20 दिन का, मतलब आज अगर आप मुर्गी निकाल
0: दिए हैं। आज मेरा सब निकल गई है।
1: हाँ हाँ।
0: इसको सफाई करने में 3 से 4 दिन लगेगा, उसके बाद फिर निपवाई पोताई करके चूना से पूरा चूना छिड़क करके।
1: अच्छा। जो आप बेड जो दिए हुए हैं बालू का, उसका क्या करेंगे आप, ये हटा देंगे या फिर?
0: नहीं, इसको चेंज हर लोड में चेंज करना पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: नया डालना पड़ता है। अभी ये तो अब बरसात आने वाला है, गर्मी के दिन में सिर्फ एक बार बालू डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: एक लोड में बालू डालते हैं, उसके बाद गर्मी खत्म हो जाता है।
1: अच्छा।
0: बारिश का मौसम अब आने वाला है तो फिर हम लोग कुन्नी पर छोड़ने लगेंगे बच्चा।
1: कुल मिला के आपके पास 5 दिन आपको साफ सफाई करने में रहता है
0: जी।
1: उसके बाद आप चुनाव का छिड़काव करेंगे या किसी दवा का स्प्रे करेंगे,
0: तो
1: आप 20 दिन में आप फिर इसे डालेंगे।
0: हाँ, 20 दिन के बाद।
1: तो साल में, एक साल में आप कितना बार इसमें कितना लोट मुर्गियां डालते हैं?
0: साल में 6 से 7 लोट हो जाता है, कभी कभी 7 हो जाता है, नहीं तो 6 लोट साल का रखता है।
1: अच्छा अच्छा। तो जैसे आप किसान बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि गर्मी का समय है, गर्मी के समय में किन किन बातों का ध्यान किसान बंधु दें ताकि उनके पास इतने बड़ा रकबा या इतने बड़ा क्षेत्र में मुर्गी पालन करते हैं, उनके लिए क्या उपदेश देना चाहते हैं?
0: उनको हम यही कहेंगे कि अगर करकट सीट पे अगर तिरपा बिचाली डालते हैं तो ठीक रहता है, उसमें क्या है कि फोकर लगाया हुआ रहता है तो पानी से हमेशा भींगते रहता है।
1: हाँ हाँ।
0: तो फार्म का टेम्परेचर बना के रखता है नॉर्मल।
1: अच्छा अच्छा।
0: टेम्परेचर कम से कम वही 32 डिग्री तक रखता है बना के पानी डालने के बाद।
1: हाँ हाँ।
0: जो मुर्गियों के लिए
1: श्रेष्ठ है,
0: श्रेष्ठ रहता है। और फिर भाई जाली के साइड साइड से सूतरी का बोरा लगवा देते हैं, और उसमें भी मेरा तो सूतरी का बोरा भी खोल दिए हैं।
1: हाँ हाँ।
0: एक माल निकल गया, बोरा खराब हो जाता है, ज्यादा दिन लगा हुआ।
1: अच्छा।
0: सूतरी का बोरा लगवा देते हैं, पानी भी मरवाते हैं।
1: अच्छा, वो जो आप लटका रखे हैं इसका हवेदार जगह में सब पानी का फुहारा मारते हैं तो ठंड रहता है,
0: ठंडा रहता, अंदर से ठंडा बना के रखता है टेम्परेचर।
1: संजय जी, आप हमारे किसान बंधु को बहुत अच्छा जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी हम लोगों ने जानकारी सुना कि किस प्रकार से मुर्गी पालन करे और किस किस विधि का हम लोग उसमें उपयोग करें ताकि गर्मी के दिन में ऐसे मुर्गियों का पालन अच्छे से हो सके, तो ये जानकारी बहुत अच्छी थी यशवेंद्र।
3: बिल्कुल।
2: और जानकारी के बाद अब समय हो चला है कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अनुमति लेने का। तो ग्रामीण भाई बहनों, कार्यक्रम खेतीबाड़ी से मुझे प्रशांत को
3: और हमें यशवेंद्र को
2: दीजिए इजाजत।
3: नमस्कार,
2: नमस्कार।

दोस्तों, ये आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण भाइयों को संबोधित करता कार्यक्रम खेती बारी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। राज्य में नियुक्ति परीक्षाओं में चल रहे भाषा नियमावली के मसले पर मंत्री ने कहा कि इसे विवाद कहना उचित नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ चूक हुई है। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं है, वहां उसे अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है। धनबाद में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 20 से अधिक निजी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया। इस दौरान कई अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन किया गया और उन्हें ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए। रांची विश्वविद्यालय के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 5 मई से आयोजित 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष डॉ. सुदेश साहू ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त साधन बताते हुए प्रतिभागियों को इस दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर लोहरदगा जिले में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जिलेवासियों से तंबाकू एवं तंबाकू जनित उत्पादों के सेवन से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला और धनबाद समेत 11 जिलों में कल गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, संध्या के 6:02 हुए हैं। लीजिए पेश है हमारे श्रमिक भाई बहनों को संबोधित करता कार्यक्रम मेहनत कश।

अविक्रम मेहनत का सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को, साथ ही साथ हमारे तमाम श्रमिक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार जोहार। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। दोस्तों, कार्यक्रम मेहनत कस में आज हम एक खास विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो विषय है वो है प्लास्टिक के विकल्प के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। तो इस कार्यक्रम में आज हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि स्टार्टअप एक उज्जवल भविष्य के लिए कैसे आवश्यक है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ, वार्ता सुनने के साथ साथ, हम आपके लिए कुछ प्रेरणादायक गीत भी लेकर आए हैं। तो आइए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर कार्यक्रम मेहनत कश में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं प्लास्टिक के विकल्प के क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों, प्लास्टिक निर्माण उद्योग में मशीन ऑपरेटरों और प्रसंस्करण तकनीशियनों से लेकर उच्च विशिष्ट इंजीनियरों और संयंत्र प्रबंधकों तक तकनीकी क्षेत्र में कई प्रकार के करियर उपलब्ध हैं। प्लास्टिक निर्माण में कच्चे पॉलीमर पदार्थों को तैयार उत्पाद में परिवर्तित करना भी शामिल होता है, जिसका उपयोग ऑटोमोटिव, चिकित्सा उपकरण, पैकेजिंग, उपभोक्ता वस्तुओं, एरोस्पेस और निर्माण जैसे उद्योगों में किया जाता है। दोस्तों, प्लास्टिक के विकल्पों के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखें तो इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पर्यावरण संरक्षण और सरकारी प्रबंधों के कारण इस सेक्टर में तेजी से आज नौकरियां बढ़ रही हैं। अगर हम इस क्षेत्र के प्रमुख सेक्टरों की बात करें तो अनुसंधान और विकास, उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और बॉन्डिंग, कंसल्टेंटी और ऑडिटिंग जैसे प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम रोजगार के विकल्प को तलाश सकते हैं। अगर हम अनुसंधान और विकास की बात करें तो नए बायोप्लास्टिक और सड़ने वाले पदार्थों की खोज करना जिसमें शामिल होता है। उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात करें तो इसमें जूट, कागज, बांस और गन्ने की खोई से उत्पादन बनाना शामिल होता है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं को देखें तो इसमें पर्यावरण अनुकूल कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक पहुंचाना होता है। अगर हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें इको फ्रेंडली उत्पादों के लिए नए बाजार खोजना शामिल होता है। और अगर हम कंसल्टेंटी और ऑडिटिंग के क्षेत्र में अपने करियर को तलाशते हैं तो इसमें कंपनियों को प्लास्टिक मुक्त बनने की सलाह देने जैसे अवसर शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर हम इस क्षेत्र में अपने जॉब प्रोफाइल को ढूंढते हैं तो इसमें बायोप्लास्टिक इंजीनियर, जिसमें पौधों से प्लास्टिक बनाने की तकनीक पर काम करना होता है, पैकेजिंग डिजाइनर, जिसमें कंपनियों के बिना सुरक्षा और सुंदर पैकेजिंग तैयार करना होता है, कच्चा माल विशेषज्ञ, जिसमें जूट, कपास और बांस की खेती और सप्लाई को संभालना होता है, और अपशिष्ट प्रबंधक, जिसमें बचे हुए जैविक कचरों को रिसाइकल करना शामिल होता है। ऐसे जॉब प्रोफाइल इस क्षेत्र में आपको दिखलाई देंगे। दोस्तों, इस क्षेत्र में जाने के लिए आवश्यक कौशल क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपसे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि स्टार्टअप एक उज्जवल भविष्य है, और इस विषय पर आज जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद होंगी देविका वर्मा।

0: श्रोताओ, चलने वाले निकल गए हैं, जरा जो ठहरे कुचल गए हैं। हरकत से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है यहां की।
1: श्रोताओं, इस वार्ता को हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, इस गीत के बाद अब हम आइए सुनते हैं वार्ता, जिसमें हम आज जानेंगे कि स्टार्टअप के क्षेत्र में हम अपने उज्जवल भविष्य को तलाश सकते हैं।
1: क्या आपने कभी स्टार्टअप के विषय में सोचा है? क्या आपने सोचा है कि इसे शुरू किया जाए? क्या आपके मन में ख्याल आया कि फंड कहाँ से जुटाया जाए? तो श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पेशकश, जिसमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एक्चुअली स्टार्टअप, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौजूदा बाजार में कुछ नया लाने का प्रयास है, चाहे वो कोई नया उत्पाद हो, नई सेवा या फिर व्यवसाय करने का नया तरीका। भारत सरकार की स्टार्टअप योजना ने युवाओं के लिए रोजगार का नया वातावरण सृजित कर उन्हें

0: एक नई राह दिखाई है। आज के प्रतियोगी युग में नौकरियां हासिल करना सभी के लिए आसान नहीं है और कुछ युवाओं का रुझान नौकरी करने से ज्यादा सफल व्यवसायी बनने की ओर होता है। 16 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई स्टार्टअप योजना देश के युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में अनूठी पहल है। सरकारी पहल, प्रोत्साहन और सहयोग का ही परिणाम है कि आज देश की युवा पीढ़ी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। स्टार्टअप ऐसी कंपनी होती है जो अपने व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में होती है, स्थापित कंपनियों से अलग। ये ऐसी उत्पाद या सेवा विकसित करती है जिसकी जरूरत समाज में है और जिनकी बाजार में मांग की जाती है। स्टार्टअप इकाई प्रौद्योगिकी तथा बौद्धिक क्षमताओं से प्रेरित है जो नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में नवाचार व उद्यमिता के लिए एक मजबूत एवं समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। भारत दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर है, ये टैक्सन की नवीनतम रिपोर्ट है। आज शिक्षा से लेकर कृषि, खाद्य एवं पेय, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी, एविएशन, फार्मास्यूटिकल, स्पेस टेक्नोलॉजी सहित तमाम क्षेत्रों में नए विचारों से लैस युवा सफलता की नित नई कहानियां रच रहे हैं। वे न केवल रोजगार प्रदाता बन रहे हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रहे हैं। इससे देश में उद्यमशीलता का एक नया वातावरण तैयार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि मेरा सपना है कि देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। सचमुच स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत युवाओं के इनोवेटिव आइडिया को प्लेटफॉर्म मिलने और फंडिंग की व्यवस्था होने से न केवल महानगरों बल्कि छोटे शहरों के युवा भी स्टार्टअप बनाने के लिए प्रेरित हुए। आज देश के 656 जिलों में 1.5 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। देश में 27,459 स्टार्टअप के साथ तमिलनाडु सबसे आगे है, जबकि कर्नाटक दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर आज देश में 1,70,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। आज भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें लगभग 12 से 13 लाख युवा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। देश में तेज होती स्टार्टअप क्रांति ने महिला उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दिया है। यूं तो स्टार्टअप शुरू करने की कोई उम्र सीमा नहीं है, पर युवाओं के लिए यह बेहतर करियर विकल्प है। आज के दौर में जब तकनीक मदद के लिए हमेशा साथ खड़ी है, हमारी नई पीढ़ी स्टार्टअप के जरिए अपनी करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। वे अपनी रुचि के अनुसार किसी भी क्षेत्र को चुन सकते हैं। भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के माध्यम से लोगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। आज भारत में कई ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनके नाम लोगों की जुबान पर हैं। किसी भी स्टार्टअप को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक सुदृढ़ योजना तैयार करने की जरूरत होती है। इस योजना में कंपनी के लक्ष्यों, उसके विजन और मार्केटिंग रणनीतियां आदि शामिल होती हैं। स्टार्टअप एक ऐसी राह है जिसमें सफलता के लिए किसी कॉलेज की डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण होता है उत्पाद या सेवा से संबंधित ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा, जो लोगों को यह विश्वास दिला सके कि वह जिस उत्पाद या सेवा को उन्हें मुहैया कराने का प्रस्ताव दे रहा है उसकी उन्हें जरूरत है और वही सफल स्टार्टअप निर्माता बन सकता है। एक सफल व्यवसायी में लोगों को समझने और उन्हें समझाने की प्रतिभा अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए ताकि वह उनका विश्वास जीतकर उन्हें ग्राहक बना सके। एक बिजनेसमैन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी कंपनी द्वारा ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो लोगों के बीच जाए तो प्रशंसा पाए और लोग उसे मन से अपनाए। स्टार्टअप किसी अन्य बिजनेस की तरह ही काम करता है। यहाँ भी उत्पाद बनाए जाते हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं, जिससे उनकी आय होती है और स्टार्टअप का व्यापार चक्र चलता है। इस पूरे चक्र में महत्वपूर्ण घटक हैं लागत, राजस्व और लाभ। लागत किसी उत्पाद को बनाने में लगाई जाने वाली राशि है। प्रत्यक्ष लागत किसी उत्पाद को बनाने में लगती है। इसमें उत्पाद के निर्माण और पैकिंग से लेकर लेबर और उनका वेतन सम्मिलित होता है। अप्रत्यक्ष लागत में विज्ञापन, प्रमोशन, विपणन, किराया इत्यादि सम्मिलित होता है। राजस्व वह पैसा है जो कोई स्टार्टअप अपने उत्पाद बेचकर कमाता है। राजस्व के आकलन से ही पता चलता है कि कोई व्यवसाय किस गति से आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रगति क्या है। जब तक राजस्व लागत से ज्यादा नहीं आता, लाभ नहीं हो सकता है। उत्पादों की कीमत सोच समझ कर इस तरह रखनी चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक लोग खरीद सके, ताकि घाटे जैसी स्थिति से बचा जा सके। व्यवसाय के लिए स्थान का अधिक महत्व होता है। उत्पाद या सेवा के अनुरूप स्थान का चयन जरूरी है। व्यवसाय ऑनलाइन किया जाएगा या किसी कार्यालय से अथवा किसी स्टोर के माध्यम से संचालित होगा, यह बात पहले ही तय हो जानी चाहिए। स्टार्टअप का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत और सही रणनीति। जिस प्रकार पौधों को रोपने के बाद उसे सही खाद, समय से पानी और उचित देखरेख की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शुरुआती दौर में इसकी अत्यधिक देखभाल की जरूरत है। स्टार्टअप की सफलता उसके प्रति पूर्ण समर्पण, कड़ी मेहनत, रचनात्मकता, सामने आई परिस्थितियों से निपटने की क्षमता आदि शामिल है। स्टार्टअप व्यक्ति को खुद की क्षमताएं प्रदर्शित करने, बेहतर कमाई करने और एक शानदार भविष्य निर्माण की राह दिखाता है।
1: स्टार्टअप कैरियर को देता है एक उज्जवल विकल्प। इस विषय पर आज बातचीत कर रही थी, बतला रही थी देविका वर्मा।

मत मत झरबंदे मत कामले मत झरबंदे मत कामले जिन हाथों में सब बीच मत जिन हाथों का नाम ले जिन हाथों में सब बीच मत जिन हाथों का नाम ले मेहनत से मत झरबंदे।

ना जीवन पत्थर है और तुझ में दम नहीं है, इन हाथों को पत्थर कर ले फिर तू भी कम नहीं है, फिर तू भी कम नहीं है। पत्थर से पत्थर टूटेगा प्यारे इतना जान ले।

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बन के तेरे पांव पड़ेंगी दत्ता ने, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द बन के। शान हमारी मेहनत से है प्यारे कितना जान ले, मेहनत से मत डर बन दे हिम्मत।

0: जो कल करना है अब कर ले, कल की किसे खबर है। ढलता सूरज कहता है ये जिंदगी सफर है, जो कल करना है अब कर ले, कल की किसे खबर है, कल की किसे खबर है। आज तो सब जीवन कहते हैं प्यारे इतना जान ले,
1: मत जान ले,
0: मेहनत से मत डर बन दे।

तो दोस्तों, अगर आप में हिम्मत है और अगर आप हिम्मत से कार्य करते हैं तो कभी भी आपको निराशा का मुंह नहीं देखना होगा। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे प्लास्टिक के विकल्पों के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की। तो इस क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ स्किल भी होनी चाहिए, और वो स्किल है तकनीकी ज्ञान का होना, रचनात्मकता का होना और मार्केट रिसर्च का गुण आप में होना चाहिए, तभी जाकर आप इस क्षेत्र में एक बेहतर करियर की तलाश कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, जैसे जूट के बैग, बांस के बर्तन या कागज के स्ट्रॉ बनाने का उद्योग भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम मेहनत कश में बस इतना ही। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो आइए, तो आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनत कस FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत विपिन सचदेवा की आवाज में।

दोस्तों, ये आपने सुना विपिन सचदेवा की आवाज में फिल्म सनम बेवफा से लिया गया ये खूबसूरत सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में।

दोस्तों, भी आपने सुना अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में गाया ये खूबसूरत सा गीत। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

वास्तव कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाए इसी खूबसूरत से गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 MHz पर, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:55 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे राज्य केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार।

मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर। कहा, जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं, वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं है, वहां उसे अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है।
1: हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं, तो जनजातीय भाषा है वो सबको स्वीकार है, लेकिन जिस जिले में मगही और भोजपुरी बोली जाती है वहाँ जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो हम लोग की मांग यही थी कि इस भाषा को शामिल किया जाए।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की गई। धनबाद में आज श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सहायक नियोजन पदाधिकारी पद्मा कुमारी ने बताया कि रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
2: सभी सेक्टर की कंपनी है, जिसमें एलएनटी है, होंडा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिलायबल इंडस्ट्रीज है, इस तरह की कंपनीज है। और इसमें मुख्य रूप से आईटीआई ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है, झारखंड के और खासकर धनबाद की भी कंपनियां हैं और साथ साथ बाहर की भी कंपनियां हैं। तो युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को रजिस्टर करें नियोजनालय में और समय समय पे होने वाले इन एक्टिविटीज का पार्ट बने।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड मुख्यालय से आज महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो नामक एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उपविकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों और नशामुक्त समाज के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। पलामू जिले से पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक राजेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची के गले से सोने का लॉकेट काट लिया था।
3: छोटे बच्चे जो मामा के जो पीछे बैठे हुए थे, लॉकेट काटने के दौरान जो है इंजर्ड हो गए थे। पीठ के साइड में थोड़ा सा इंजरी हुआ था। इलाज के दौरान पता चला कि 10-12 पाके लगे थे। उस चोरी का जो है उद्भेदन करते हुए सहर थाना पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फंगाल आ गया, पहचान किया गया था सानू आलम किरदार फिरोज आलम। शहर में आसपास छोटी मोटी चोरी घटना जो हुई है विगत दिनों में, ये लोग उसमें शामिल किए।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला

0: जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब रीजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
1: रांची विश्वविद्यालय के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 5 मई से आयोजित 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष डॉ. सुदेश साहू ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त साधन बताया। आईपीएल की तर्ज पर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत कर दी है। जमशेदपुर में आयोजित खिलाड़ियों की नीलामी में करीब 126 खिलाड़ी शामिल हुए। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि लीग की शुरुआत 10 जून से शुरू होगी। इस दौरान 28 मैच खेले जाएंगे।
2: हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए और खेले और नेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को दिखाएं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी देखेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका मिलेगा। तो बाहर के खिलाड़ी को, किसी भी राज्य का खिलाड़ी को हम लोग अलाउ नहीं करें, ये हमारे लोकल बच्चे के लिए है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर। कहा, जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं, वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट्स के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर अल नीनो इफेक्ट को ध्यान में रखकर संयुक्त कृषि विभाग तैयारियों में जुट गया है। साहिबगंज भूमि संरक्षण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में 52 तालाबों का जीर्णोद्धार, 99 परकुलेशन टैंक तथा 13 बोरिंग का निर्माण किया है, जिससे लगभग 2500 एकड़ भूमि सिंचित होगी। विगत 3 वर्षों में इस प्रकार कुल 300 तालाबों का जीर्णोद्धार, 500 परकुलेशन टैंक और 200 बोरिंग से लगभग 12000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। विभाग ने अल नीनो प्रभाव को देखते हुए किसानों को जल संचय के लिए खेतों में वाटर रिचार्ज पिट बनाकर जल संचय करने की अपील किया है।
2: अल नीनो इफेक्ट के चलते आने वाले समय में हाड़ की स्थिति बन रही है, इसको लेकर विभाग के स्तर से और हम लोग भी अपने स्तर से तैयारियां कर लिया है। तालाब जीर्णोद्धार हो, कार्कुलेशन टैंक हो या फिर डीप बोरिंग के माध्यम से कैसे हम लोग जल संरक्षण या जल का उपयोग कर सकते हैं। तालाब में हम लोग को लगभग 1200 एकड़ हम लोग सिंचित एरिया इस बार नया जनरेट करने वाले हैं। कार्कुलेशन टैंक में लगभग 1100 एकड़ हम लोग और बोरिंग से हम लोग लगभग 80 एकड़, तो कुल मिला के हम लोग 2500 एकड़ नया सिंचित एरिया हम लोग इस बार तैयार करेंगे। लगभग 3000 के आसपास किसान इससे लाभान्वित होने वाला है।
1: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इस वित्तीय वर्ष में कुल 35 विषयों पर 1050 लोगों का कौशल विकास कर स्वरोजगार से जोड़ने पर कार्य कर रही है। वर्तमान में साहिबगंज आरसेटी में उद्यानिकी और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस संस्थान के प्रशिक्षण का लाभ आदिम जनजाति के लोगों को भी मिल रहा है। इस हुनर को सीखकर अपने अपने क्षेत्रों में यह स्वरोजगार से भी जुड़ रहे हैं।
3: ग्रामीण प्रदेश के प्रशिक्षणार्थी होते हैं के लिए संस्था चुकी है, ये संस्था है। तो इस वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ भी अभी 2 ऑनगोइंग प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है और 2 पायलट कार्यक्रम हो चुके हैं। ब्यूटी पार्लर वाला अभी कोर्स मेरा चल रहा है, उसमें आपको 35 है और हॉर्टिकल्चर वाला मेरे 30 है। और इस साल हम लोगों का जो अभी तक का

0: प्रोग्राम जो दिया गया है भारत सरकार के द्वारा से, अभी तक टोटल हमको 35 प्रोग्राम कराने हैं।
1: वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग साहिबगंज ने भी वन्य जीव संरक्षण और जल संचयन की दिशा में विभिन्न चेक डैम के माध्यम से पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को संचय करने पर कार्य किया है, जिसका लाभ वन्य जीवों पर्यावरण के साथ साथ स्थानीय कृषि को भी हो रहा है। वन विभाग साहिबगंज के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन पहाड़ों पर होने वाले वर्षा जल को संचित करने के लिए कुल 26 चेक डैम का निर्माण हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया,
2: साहिबगंज के जो राजमहल पहाड़ियां हैं उनमें बारिश का पानी रुकता नहीं है और वो बहुत तेजी से गंगा नदी की तरफ बह जाता है, जिससे वन्य जीव जो रह रहे राजमहल के पहाड़ियों में उनको भी पानी की असुविधा होती है, साथ में जो ग्रामीण है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने वन भूमि के किनारे ऐसे जल स्रोतों का निर्माण किया है, पुनरुद्धार किया है, जिनसे वनों में रह रहे जीवों को भी पानी मिले, जो भूगर्भ जल है ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो भी हो, और तीसरा हमारे पास रह रहे ग्रामीणों को भी इससे पीने का पानी मिल रहा है।
1: देश में पहली बार आज ही के दिन हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
3: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम झनकार।

है जवानी तो इसको होना है। दोस्तों, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ें थी आईपी सिंह, जूनिता गांधी, सुधीर यदुवंशी और साथियों की आवाज में। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना सुखबिंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया ये प्यारा सा गीत। भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम झनकार FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 7:30 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दुश्मन से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया फिल्म माचिस से।

दोस्तों भी आपने सुना दिलजीत सिंह दोसांझ, साजिद टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में फिल्म बॉर्डर टू से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे मिल गया है फिल्म मातृभूमि से।

हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत भी आप सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है फार्मेसी की तो पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा है सीसीएल बरकाकाना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोको, चारू और आर के वर्मा ने। इसी गीत की फरमाइश आई है मालीटोला खिरगांव हजारीबाग से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, ऋषि और राहुल की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है ओल्ड लिसनर्स ग्रुप बरकाकाना से मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहिन सुल्ताना, अफजाल ताज और तस्नीम ने। तो आइए इन तमाम श्रोताओं के पसंद पर सुनते हैं फिल्म जानवर से लिया गया ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण और सुनिधि चौहान की।

दोस्तों आपने सुना उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म जानवर से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म अपने से, और इस गीत को सुनना चाहा है रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, निखत परवीन, ऐशान अहमद, तहसीन बानो, आरजू परवीन, नशीम अहमद, खलील अहमद और निसार अहमद ने। इस गीत की फरमाइश आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है नया टोला भीखनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान ने। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, महमूद आलम।

दोस्तों, अभी आपने सुना विपिन सचदेवा और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सनम बेवफा से लिया गया ये फरमाइशी गीत। और इस गीत को सुनना चाहा था छिपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सविया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू, संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका ने। इसी गीत की फरमाइश आई थी छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप साबले पाटिल, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा था आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने। अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। और इस गीत को पसंद किया है रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, शगुफ्ता बेगम, नूरजहां बेगम, तहसीन बानू, खलील अहमद और एहसान अहमद ने। इसी गीत की फरमाइश आई है भादोडी झुमरी तिलिया से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र पांडे, अनिल चंद्र पांडे, साकेत, शुभम, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता और समस्त परिवार के सदस्यों की ओर से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है मानगढ़ से मिथिलेश पांडे, बबीता देवी, नीतू कुमारी, अंशु कुमार पांडे, बाबू, सुधांशु कुमार पांडे और अभिषेक कुमार पांडे ने।

दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। और इस गीत को सुनना चाह है पंचमंदिर रोड हजारीबाग से कलाम मोहम्मद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू ने। इसी गीत की फरमाइश आई है मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा तथा उनके ढेर सारे साथीगण की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है झुमरी तिलिया से जगन्नाथ प्रसाद साहू ने। और इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने।

और दोस्तों भाई, ये सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश गीत। और इस गीत को सुनना चाहा है जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी और नूतन कुमारी ने। इस गीत की फरमाइश आई है रसूलीगंज हजारीबाग से मोहम्मद गुलाम अवी, गुलाम अली और मोहम्मद शद्दाम अली की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहे जमा मस्जिद रोड रामगढ़ से शहादत हुसैन, करामत हुसैन, अकबर हुसैन, सलामत हुसैन, तलत यास्मीन, फरहत यास्मीन, रफत यास्मीन और बिस्मिल्ला खान ने। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है गोलापार रामगढ़ से शाहनवाज हुसैन, अकबर हुसैन, अनवर हुसैन, तलत यास्मीन और इनके ढेर सारे दोस्तों ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फरमाइसी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और फिर रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की

0: पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान

भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। कीके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

0: ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।
1: तड़प

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

केके बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, लाइफ में कभी कभी, और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं उन्होंने सारे मेरे, जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी, और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो है एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी, और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

छाया गीत प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम रजनीकंधा।

कार्यक्रम रजनी गंधा सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जिसे हमने लिया फिल्म अनामिका से।

दोस्तों, ये आपने सुना फिल्म अनामिका से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो। आवाजें हैं महेंद्र कपूर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म चुपके चुपके से। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और अब दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म खिलौना से।

दोस्तों मोहम्मद रफीक की आवाज में गाई सी खूबसूरत सी गीत के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से अपने दोस्त संजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज के फनकार।

कार्यक्रम आज के फनकार सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय केसरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा यह कार्यक्रम आधारित है हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता परेश रावल पर।

दोस्तों, परेश रावल का जन्म आज के दिन 30 मई 1950 को महाराष्ट्र में गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, परेश रावल ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। दोस्तों, परेश रावल भारत के मंझवे अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने दर्शकों को हेरा फेरी के बाबूराव गणपतराव आपटे से कभी हंसाया तो ओ माय गॉड में कांजी लालजी मेहता बनकर जागरूक किया, तो कभी राम लखन में खलनायक का किरदार निभाया। दोस्तों, परेश रावल को पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड जैसे कई सारे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों।

दोस्तों, परेश रावल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1982 में एक गुजराती फिल्म से की थी। उसके बाद उन्होंने 1984 में होली नाम की हिंदी फिल्म में सहायक की भूमिका निभाई थी। हिंदी के अलावा परेश रावल ने गुजराती, तेलुगु, अंग्रेजी और मराठी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने करियर में अंदाज, अपना अपना, चाची 420, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, दीवाने हुए पागल, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम, ओएमजी तथा संजू सहित तमाम हिट फिल्मों में काम किया है।

दोस्तों, परेश रावल फिल्मों में काम करने के साथ साथ राजनीति में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। परेश रावल ने साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी साल उन्होंने लोकसभा में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का उन्हें मौका मिला। इस चुनाव में जीतकर वे लोकसभा सांसद भी बने। हालांकि इसके बाद साल 2019 में लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने यह कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वो राजनीति को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं।

और दोस्तों, अगर हम परेश रावल को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 1993 में फिल्म सर में उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 1994 में फिल्म वो छोकरी और सर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 2003 में फिल्म आवारा पागल दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। और 2014 में भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार से परेश रावल को नवाजा गया।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ कार्यक्रम आज के फनकार से अपने दोस्त संजय केसरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार, और हमारा आज का यह कार्यक्रम आधारित था हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता परेश रावल पर। FM है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।